0: और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे मैदान में रेत के प्यासा उसे पानी समझे, यहां तक कि जब उसके पास आए तो उसे कुछ भी ना पाए और अल्लाह ही को अपने पास देखे, तो वो उसे उसका हिसाब पूरा पूरा चुका दे और अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। या उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरे, जिस पर लहर चढ़ी चली आती हो और उसके ऊपर और लहर आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो, गरज अंधेरे ही अंधेरे हो, एक पर एक छाया हुआ जब अपना हाथ निकाले तो कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी न दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमानों और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और पर फैलाए हुए परिंदे भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है, और आसमान और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है।
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ

0: क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तह बतह कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल से मेघ निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बीनाई को उचके लिए जाती है। अल्लाह ही रात और दिन को बदलता रहता है, अहले बसारत के लिए इसमें बड़ी इबरत है। और अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदार को पानी से पैदा किया, तो उनमें से बाज ऐसे हैं कि पेट के बल चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो दो पांव पर चलते हैं और बाज ऐसे हैं जो चार पांव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हम ही ने रोशन आयतें नाजिल की हैं और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है।
1: वयकुलून आमन्ना

ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة

0: وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم.
1: और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी उसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें न जाहिर करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता है जानता है।
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: न तो अंधे पर कुछ गुना है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से। और इसका भी तुम पर कुछ गुना नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीजा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।
1: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله
0: मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर चले नहीं जाते। ऐ पैगंबर, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है।

0: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाइ 0333-85-569
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
5: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड रंदी।
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836
1: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने थो राबते लाइ 03011196850
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557024
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

2022 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेप पारां भर्ती थियल समूरनि तदरीसी ऐं गैर तदरीसी मुलाज़िमनि जूं तालीमी क़ाबिलियतनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 3888 5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेहराबपुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहराबपुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो

0: मीरापुर FM 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
3: 03013992836
4: भाई मोहम्मद उमेर गोरी 0319 15 5 724
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94

अमेरिकी फौज जावे ॾींहं बि ईरान जे नवे फौजी हंधनि ते हमला बंदर अब्बास कसम सेरे कोनार्क ऐं चाबहार स्ट्रीट जंग टिकाणो ऐं रेलवे प्लेन खे निशानो बणायो वियो। अमेरिका सेंट्रल कमांड चयो आहे त अबनाई हरमुज़ में जहाज़नि जे अचवञ यकीनी बणाइण लाइ हमला कया विया। कार्रवाइयूं ईरान जी अगराई जो रदे अमल आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं बि अमेरिका ईरान में 90 खां वधीक हदफ खे निशानो बणायो हो। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त अमेरिकी हमलनि सबबि चाबहार में बिजलीअ जी फराहमी मुतासिर थी आहे। बोशोर सूबे में धमाका ॿुधा विया पर एटमी पावर प्लांट खे को बि नुक़सान नाहे पहुतो।

ईरान ते हमला अपनाए हरमुज में सामुंडी जहाजन ते थियल हमलन जो रदे अमल आए बीहर अड़ी कार्रवाई ते नतीजा वधीक सख्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे ते खेस नथो लगे ते ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का भी ताकत बची आहे। ईरान सां जंग बधी मुआहिदो खत्म थी वियो आहे। बिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान आहे। जंग बंदी थियण जो इम्कान न आहे। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतला खामनाई ऐं संदसि कुटुंब जा मड़ अॼु मुशहद में ईमान रज़ा जे रोज़े जे आते में शहीद मिटी माउ हवाले कया वेंदा। गुज़िरियल राति शहीद आयतला खामनाई जो मड़ करबला में इमाम हुसैन रज़ीला तालाना जे गाज़ी अब्बास जी मज़ार अंदर निया विया। जनाज़े नमाज़ में 70 लख खां वधीक माण्हुनि शिरकत कई। जनाज़े नमाज़ में 38 लख खां वधीक माण्हू शिरकत कई। शहीद आयतुल्लाह खामनाई जो मड़ अॼु इराक खां वापसि मुशहद पहुचायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़दीशान जनाज़े नमाज़ में शिरकत करण ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो शुक्रियो अदा कयो। सदर मसूद पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ईरान ऐं पाकिस्तान जो अवाम सदाई कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल रहंदा। असां पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं अवाम जी हिमायत खे कॾहिं बि न विसारींदासीं।

0: अमेरिका के वायदे खिलाफ ही है। धमकिन जी कीमत अदा करनी पवंदी। आप नरमुज अमेरिकी धमकिन सांबे पे ईरानी इंतजाम तहत खोलो वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर है त अमेरिकी धमकिन का नथा डिजू। अमेरिका हारमोनीज ईरानी इंतजाम खुदमुख्तियारी तहत खोलो वो। नेब तालीम खाते के 1999 का जून 2022 ताईं जे मुलाजमन जो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। नेब पारा भारतीय थियल समूरन तदरीसी ए गैर तदरीसी मुलाजमन जो तालीमी काबिलियतन जो रिकॉर्ड तलब कयो वयो। तालीम खाते समूरन लागापियल इदारन ऐं ज़िले तालीमी आफिसरन खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदर रिकॉर्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमन जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। गढ़ी खेरो के शाखन में पानी खोर खिलाफ आबादगार एतजाज। आबादगार चवण है बेगारी केनाल में निकरद ताजा शाख ईदन शाख लुंड माइनर ए सीरवा में पानी घट है। जो पानी है आपाशी अमलदार पैसन एवज विक्रो कर रहा है। नोटिस वी शाखन में पानी फराम कर नुकसान का बचाया वे। सिंध के मुख्तलिफ इलाक में औरत समेत टिन जन लाश हथ ठरी। मीरवा के गोट तारकू भरसा केनाल में अणजातल शख्स जो लाश मिलो। रोड़ी में स्टेशन रोड त अणजातल शख्स जो लाश हथ अस्पताल मुंतकिल। कुंडरी में पानी की टैंकी में बिन बार माव जो लाश मिलो। वारसन पारा कानूनी कार्रवाई का इनकार। मुरीद शाख में सेहड़वा मां निकरंद डहर माइनर के 20 फुट घारो। आरडी 4 वट घारे सबब फसल पानी हेठ। आबादगार चवण है इतला डेण बावजूद आपाशी अमलो घारो बंद करण लाए नाहे पहुतो। पैंजी मदद पाण तहत घारे के बंद करण जी कोशिश करे रहा आयूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320180003।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश रंग वगैरह बाजार का बार दस्तियाब आहिन।
4: हाने अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़ बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320437-2 0242-460100।
6: आ अंगन जी तू कयो गदी दी गुजारो गाड़ी। السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
6: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
7: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836.
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301 91 896

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेरे बाप चांडियो है मुद्दा चांडियो धुर में कूनी जीरो बती वे एक जनों कतल बेहड़ वे जो मेरे बाप कतल केस में बरी तल मुद्दा चांडियो धुर में छिरे दौरान फायरिंग एक जनों कतल गोट गुंगू पीरवार इलाके में गोली लगर सब रियाज चांडियो मार्जी वे मेरे बाप चांडियो चवाना है कतल केस में बरी तल मुद्दा चांडियो जेल में निकलने बाद समय हथियार बदन से हमलों कहो मुझे वेजे अजीज के कतल कहवा है तला बावजूद पुलिस गुमा है।

ॿेड़ीअ बि ईरान जे नवे फ़ौजी हंधनि ते हमला। बंदर अब्बास, कसम, सिरक, कोणार्क, चाबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणनि ऐं रेलवे पुलनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीका सेंट्रल कमांड चयो आहे त अबन हुरमस में जहाज़नि जी अचवञ यकीनी बणाइण लाइ हमला कया विया। कार्रवायूं ईरान जी अगराई जो रदअमल आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं बि अमरीका ईरान में 90 खां वधीक हदफ़नि खे निशानो बणायो हो। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त अमरीकी हमलनि सबबि चाबार में बिजली जी फराहमी मुतासिर थी आहे। बोशहर सूबे में पिण धमाका ॿुधा विया, पर एटमी पावर प्लांट खे को बि नुक़सान नाहे पहुतो।

ईरान ते हमला अपने हरमुज में समुंडी जहाजन ते थियल हमलन जो रद अमल आहिन बीहर अड़ी कार्रवाई थी नतीजा वधीक सख्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त खेस नथो लगे ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का ताकत बची आहे। ईरान सां जंग बंदी मुआहिदो खत्म थी वियो आहे। बिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने

ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनानी हज़रत कुटुंब जा मड़ अज मस्जिद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में मिट्टी माव हवाले कया वेंदा। गुजर रात शहीद आयतुल्लाह खुमनानी जो मड़ करबला में इमाम हुसैन इस्लाम ए गाजी अब्बास के मज़ार अंदर निया व्या। जनाज़े नमाज में 70 लख मानू शिरकत कई। नजफ अशरफ में हज़रत अली के रोज़े में पिण जनाज़े नमाज अदा कई वही। जनाज़े में 38 लख मानू शिरकत कई। शहीद आयतुल्लाह खुमनानी जो मड़ अज राख का वापस मस्जिद पहुंचाया वेंद। ईरानी सदर मसूद पजशान जनाज़े में शिरकत करण से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो शुक्रिया अदा किया। सदर मसूद पजशान पैं पैगाम में चाह ईरान पाकिस्तान जो अवाम सदाई कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल रहा। असा पाकिस्तान की हुकूमत अवाम की हिमायत के कदें भी न विसारींदासीं।

0: अमेरिका के वायदे खिलाफी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अबन अरमुज अमेरिकी धमकियुनि सां बि ईरानी इंतज़ामनि तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिकी धमकियुनि खां नथा डिॼूं। अबन अरमुज ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़ुदमुख़्तियारी तहत खोलियो वेंदो।
1: नेव तालीम खाते जे 1999 ईस्वी खां जून 2022 ताईं मुलाज़मनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेव पारां भर्ती थियल समूरनि तदस्सी ऐं गैर तदस्सी मुलाज़मनि जूं तालीमी क़ाबिलियतुनि जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड उमाणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़मनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे।
0: गढ़ी खेरो जे शाखनि में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताजा शाख, ईदन शाख, लुंड माइनर ऐं सीरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपाशी अमलदार पैसनि एवज़ विकिरो करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जो लाश चली मीरवा जो ॻोठु तारकूबर सां कैनाल मां ॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। रोड़ीअ में स्टेशन रोड तां ॼातल शख़्स जो लाश इस्पताल मुंतकिल। कुंडरी में पाणी जी टांकी मां ॿिनि ॿारनि जी माउ जो लाश कयो वियो। वारसनि पारां कानूनी कार्रवाई खां इनकार।
0: मुरीद शाख में सेहड़वा मां निकरंदड़ ॾह माइनर खे 20 फुट घारो, आरडी 4 फुट घारे सभु पाणी फसल हेठि। आबादगारनि जो चवण आहे त इतलाउ ॾियण बावजूद आपाशी अमलो घारो बंदि करण लाइ नाहे पहुतो। पंहिंजी मदद पाण तहत घारे खे बंदि करण जी कोशिश करे रहिया आहियूं।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-569-3
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
0: यार, अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: कने गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9896-801
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर
1: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: ओके जी, ब्यूटीफुल कॉलर लेते हैं जी। हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: यार यार जी, सईद अहमद बात कर रहा हूँ, सिंध सोसाइटी टक्कर से।
0: सईद अहमद कैसे हैं? ठीक ठाक हैं।
1: यार जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास है, बन मजे में। जी
0: ओके जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम सुन रहा हूँ बहुत शौक से आपका, और आज नए फ्रूट के बारे में आप मालूमात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और आज एहतसाम साहब नहीं आए, आपके स्टूडियो मेहमान नहीं बने।
0: वो भी आएंगे, और हम चाहते हैं कि डिफरेंट गेस्ट को हम लेकर आए ताकि हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकें और आप तक पहुंचा भी सकें।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, नई मालूमात में आपने दी, और बहुत प्यारा लगा, और ट्राइगल के बारे में, आपने के बारे में आज मालूमात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल आप यकीनन नई चीज आपने बताई जो पहले हमने कभी भी नहीं सुनी थी और ना ही जानी थी।
0: ठीक है, ड्रैगन फ्रूट लेने जाएंगे फिर?
1: जरूर जरूर, इंशाल्लाह, अभी तक तो हमने ना इसका देखा है ना खाया है, जरूर जब तक ये शो हो जाएगा, आम हो जाएगा, तो फिर जरूर भी हम भी ट्राई करेंगे इसको, और इस्तेमाल भी करेंगे और लगाने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो यार नर्सरियों में, सखर नर्सरियों में तो बिल्कुल मिल रहा ही नहीं है।
0: सखर में नहीं मिल रहा है?
1: जी नहीं मिल रहा है सखर में, और सुना भी पहली बार है आपके ये प्रोग्राम में, सुना है इसके बारे में। और सखर में मैं तो जाता रहता हूँ, यहाँ जो भी अपनी सखर के आस पास नर्सरियां हैं या आस पास जिले के इलाके, पीरकोट हो गया, गिरफ्तार हो गया, जी, यहाँ तक मैं जाता हूँ, घोट की हो गया, बनवार के तक मैं जाता हूँ वहां से लेने जो भी नई चीजें आती है, पर यहाँ तक मुझे नजर नहीं आ रही यार चीजें।
0: नहीं, आपने तो आज सुना है ना, तो अब जब दोबारा लेने जाएंगे ना, तो तब आप सर्च कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है,
1: अच्छा जी, बिल्कुल ट्राई करेंगे, जरूर पूछेंगे।
0: ओके जी, बहुत सारा ख्याल रखें, सईद अहमद अपना, अल्लाह
1: थैंक यू आज,
0: हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और इसी के साथ हम चलेंगे आगे, छोटे से कमर्शियल ब्रेक, कहीं नहीं जाए।

0: बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का, और एक बजने में अब बहुत कम वक्त बाकी है तो लास्ट में हम लास्ट लकी कॉलर्स को रिसीव करते हैं. तो चेक करते हैं जी लास्ट लकी कॉलर. हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो. ओके जी, नेक्स्ट लेंगे कॉलर 03000 11 34 88.

0: नेक्स्ट कॉलर. हेलो.
1: वालेकुम
0: जी. कौन बात कर रहे हैं?
1: सुदा हुसैन शाहवाल.
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ,
0: ओके, थोड़ा सा लाउडली बात करें और मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है.

0: अच्छी बात है, रक्षा बांटने जी।
1: सॉरी,
0: नहीं,
1: क्या कहा? क्या है आज की अच्छी बात?
0: रक्षा

0: आगे ही मांग जो कि ट्रिपल मर्डर केस में मुलविस आ जेकी कस्टडी मां निकता उहे उन्हनि जा कज़न्स उन्हनि असांजी ट्रैक्टर हले पियो ज़मीननि ते उन ते हिननि फायरिंग कई आहे ऐं फायरिंग करे असांजे कज़न खे हिननि क़तल करे छॾियो आहे। मौक़िफ़ त इहो ई त ज़ाहिर आहे मां पहिरियां बि चयो त हिननि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस ॾिनो वियो आहे न, टे इंसानी जानियूं गिड़काए विया ऐं हुननि खे कुझु बि न थियो त हू सम्झनि था त हू ऑल इन ऑल आहिनि न, हू जेको वणे कंदा हिननि खे, हितां जो कानून कुझु बि नथो करे सघे। सो अॼु हुननि वरी चैलेंज कयो आहे कानून खे, ॾिसूं था त हाणे छा थो थिए, पर हिननि तमामु वॾो नुक़सान करे छॾियो असांजो वरी ॿीहर पाण ॾिसूं था। सुबुह खां अधु फायरिंग हले पई, पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड न कयो, जंहिंजे करे हीउ हेॾो वॾो नुक़सान थी वियो आहे। पुलिस खे असां बार बार इंफॉर्म कंदा आयासीं त हीअ अहिड़ी सिचुएशन थींदी थी अचे।
1: हथियारबंदनि जी फायरिंग में उमेर बाब चांडियो जो सोट कयो, टेणे क़तल केस मां बरी थींदड़ जवाबदारनि ते क़तल जो इल्ज़ाम। ॻोठ गुंगो पीर वारे इलाइक़े में गोलियूं लॻण सबब रियाज चांडियो मारिजी वियो। उमेर बाब चांडियो जो चवणु आहे त सोट ज़मीन ते ट्रैक्टर हलाए रहियो हो त जवाबदारनि हमिलो करे खेसि क़तल कयो। जवाबदारनि सम्झनि था त टेणे क़तल केस मां बरी थियण कानून खेनि कुझु बि नथो करे सघे।
2: अमरीकी फ़ौज जा ॿिए ॾींहं बि ईरान जे 90 फ़ौजी हंधनि ते हमला। बंदर अब्बास, कसम, सिरक, कोनार्क, चांबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणे रेलवे पुलनि खे निशानो बणायो वियो। अमरीका सेंट्रल कमांड जो चवणु आहे त आबन हुरमस में जहाज़नि जी अचवन यकीनी बणाइण लाइ हमला कया विया। कार्रवायूं ईरान जे अगुवाइनि जो रदअमल आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं बि अमरीका ईरान में 90 खां वधीक हदफ़नि खे निशानो बणायो हो। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त अमरीकी हमलनि सबबि चांबार में बिजली जी फरहमी मुतासिर थी आहे। बशर सूबे में पिण धमाका ॿुधाया विया, पर एटमी पावर प्लांट खे को बि नुक़सान नाहे पहुतो।

0: बाउंड्रीज जहाजन ते थियल हमलन जो रदे अमल आहिन। बीहर अहिड़ी कार्रवाई थी वधीक सख़्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त खेस नथो लॻे त ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंग बंदी मुआहिदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान न आहे।
1: ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर रायतुल्लाह खुमनानी हुन कुटुंब जा मड़ अॼु मस्जिद में इमाम रज़ा जे रोज़े जे आते में मिटी माउ हवाले कया वेंदा। गुज़िरियल राति शहीद रायतुल्लाह खुमनानी जो मड़ करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं गाज़ी अब्बास जे मज़ार अंदर निया विया। जनाज़े नमाज़ में 70 लख खां वधीक माण्हुनि शिरकत कई। नजफ़ शहर में हज़रत अलीअ जे रोज़े में पिण जनाज़े नमाज़ अदा कई। जनाज़े नमाज़ में 38 लख खां वधीक माण्हुनि शिरकत कई। शहीद रायतुल्लाह खुमनानी जो मड़ अॼु राति खां वापसि मस्जिद पहुचायो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पज़िशान जनाज़े में शिरकत करण ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो शुक्रियो अदा कयो। सदर मसूद पज़िशान पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त ईरान ऐं पाकिस्तान जो आवाम सदाई कुलो कुले में मिलाए बीठल रहंदा। असां पाकिस्तान जी हुकूमत ऐं आवाम जी हिमायत खे कॾहिं बि न विसारींदासीं।
0: अमेरिका खे वाइदे ख़िलाफ़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। आबदा हमज़ अमेरिकी धमकियुनि सां बि ईरानी इंतज़ामनि तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिकी धमकियुनि खां नथा डिॼूं। आबदा हमज़ ईरानी इंतज़ाम ख़ुदमुख़्तियारी तहत खोलियो वेंदो।
1: नेब तालीम खाते जे 1999 खां 2022 ताईं जे मुलाज़मनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेब पारां भर्ती थियल समूरनि तदर्सी ऐं गैर तदर्सी मुलाज़मनि जूं तालीमी क़ाबिलियतूं रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड उमाणियो वञे। रिकॉर्ड मुलाज़मनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो।
0: गढ़ी खेरो जे शाखनि में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताज़ा शाख ईदन शाख लुन माइनर ऐं सीरवाह में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपाशी अमलदारनि पैसे एवज़ विकिरो करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ ठरी मीरवा जे घोट तारको भरिसां कैनाल में अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। रोड़ीअ में स्टेशन रोड तां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ इस्पताल मुंतकिल। कुंडरी में पाणी जी टांकी में ॿारनि जी माउ जो लाश मिलियो। वारसनि पारां कानूनी कार्रवाई खां इनकार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-5769
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब दड़ा तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समातों के मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दुआओं के समंदर चाहतों की बारिश उलाजवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात नींद से जागता जमी से आसमान तक जिंदगी से मौत सांस से तारदगों से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद यहाँ पर हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डे स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी प्रोग्राम वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जा रहा है। ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं या फिर आप लगा रहे हैं तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में मजीद जो है ना वो बातें ऐसी मालूम पड़ती हैं जो कि ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए होंगी बल्कि आपकी खूबसूरती को हमेशा के लिए जो है ना वो लॉक करने के लिए भी होंगी। खूबसूरती भी वो वाली जो हमेशा आपके चेहरे पर मौजूद रहेगी और हमेशा आपके साथ साथ रहेगी। तो आप तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान। नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ साथ मौजूद है जनाब इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों को जनाब ये बताएंगे कि भाई जान आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा भी बन सकते हैं, आप हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ा भी सकते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनकें ही है। तो आप हमें ज्वाइन भी करने वाले हैं और क्या तरीके कार होंगे सब कुछ बताएंगे लेकिन आप जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होंगे और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इतनी शाली बातें करने वाले हैं। तो चलिए जी रेडी शेडी हो जाए। यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे वेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिद्रा अली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगा से प्रोग्राम करेंगे जी एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ। तो बहुत प्यारा कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है उसके बाद हम जैसे ही मुखातिब आप लोगों से होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या कुछ होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए।

0: ओके जी, क्या बात है। और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है यहाँ पर मेरे साथ, कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछ रही हूँ वो भी जरा बताते हैं। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल होने वाला है वो एक मतलब नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सा सवाल ऐसे कि आज आप मुझे ये बताएंगे, बिल्कुल जी बताएंगे, आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। अक्सर जो है ना कुछ ऐसे सवाल भी आप लोगों से पूछने चाहिए, बहुत सारे अजीब अजीब सवाल मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं। तो आज आप मुझे ये बताइए कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। ओके जी, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLR का ना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, और आप जैसे ही सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो के लाइव पोस्ट मिल जाते हैं, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते जाइए जो मैंने आज आप लोगों से पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते। ओके जी, चलिए बताइए जल्दी से और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। और मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो तो इसके इस्तेमाल से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ने वाली है। तो खूबसूरती बढ़ाना आजकल के दौर में जो है ना वो हर एक किसी का अच्छा वाला सपना बन चुका है। हर कोई चाहता है कि भाई हमारी खूबसूरती जो ना वो बढ़ती जाए और आपके चेहरे पर कोई निशान ना हो, कोई दाग ना हो, कोई एक्नी ना हो, कोई रिंकल ना हो, आपकी आंखों के हल्के जो है ना वो बढ़े हुए ना हो। तो इन सारी चीजों का हल जो है ना बस एक ही है कि जब आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप ये भी अच्छे से जानते होंगे कि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कितने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइट एश लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, व्हाइट एश का ना डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है, व्हाइट एश का सोप है, व्हाइट एश का फेस वॉश है, व्हाइट एश का लोशन है और व्हाइट एश के हेयर रिमूवल लोशन है, जो कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाते हैं, नाम लेकर तलब करते हैं। और इसके अलावा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम में, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो बिल्कुल जी, खूबसूरतियां हासिल करते रहेंगे और खूबसूरती के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं बनता, तो मत किया करें और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुरी 315-99-595 ये नंबर तुम डायल कर करीबी जनरल स्टोर से तवाजे गोठन में तवाजे एरिया में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वजन, ठीक हो गया। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसके अंदर बीज नहीं होता। अदील खान हमारे साथ मौजूद थे, बेना मुझे तरफ खां मंजन जो सलाम कबूल हो जाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन, थैंक यू। और हमारे साथ अदील कहते हैं मोरो से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बेना शायरी आहे दिए हैं जख्म तो मरहम का तकल्लुफ ना कर, कुछ तो रहने दे मेरी जात पे एहसान अपना, वाह वाह वेरी नाइस। और मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो, ओके कहते हैं माय स्वीट बुआ जी, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आदिल कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, सिद्रा मैं ठीक, आप बताएं। और कहते हैं वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही ना थी, अब जो तन्हा है तो दीवार पर आ बैठा है, क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त। और फहीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। और उसके अलावा दर्दी दिल आ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, प्यारी प्यारी को वेलकम कहते हैं, कहते सोई सोते हुए इंतजार कर रही थी तुम्हारा चलें क्या बात है। और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम चाचा शाला तांजो। और फहीम कहते हैं आज गाना सुनिएगा, चले मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाएंगे। और चेतन राम हमारे साथ ही, उमर कोट खां आप हमारे साथ ही जी, खुशामदीद कहते हैं आपको बहुत शुक्रिया के साथ साथ। और उसके अलावा चाचा खालिद कहते हैं कि मैंने सोचा यूट्यूब पर खाना काबा की पोस्ट रखी है तो आप, नहीं मैंने तो नहीं रखी, और साथ साथ क्या कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो आज आना ही था, कल मेरी छुट्टी है तो मैं कल नहीं आऊंगी ना, आज तो मैंने आना था. और मौलाई मुजाहिद बहुत सारा मर्सद माजो दे टूफ चूसल से वालेकुम अस्सलाम, क्या कहते स्वीट आरजे सिद्रा जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल जी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और आपको भी खुश आमदीद कहते हैं. अनवर भाई कहते हैं कि तोल देते हैं लोग चंद बातों पर किरदार, बारी अपनी हो तो उनके उनको तराजू नहीं मिलता. ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी. और उनखां अलावा तव्हां सभु असांजी पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, टॉपिक खे फॉलो कंदा हलो, ऐं मूंखे ॿुधायो त तव्हां कहिड़ा प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो पिया, वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो पिया या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻायो पिया. उनखां अलावा असां सां गॾु गॾु तव्हां मौजूदु रहंदा, 888-1 ते जॉइन कंदा रहो ऐं फेसबुक ते जॉइन कंदा रहो. टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी ईंदासीं. तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो, मां उहो हीअं वञी उहो हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए.
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-196-851।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-5569।
4: अदा
5: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

लोगों को बताती हूँ, जरा शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि जब आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ये एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे जनाब। और अगर व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए जरा रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और साथ ही साथ बाकी जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको बताएंगे जनाब की व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द को खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है जनाब, जो कि बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। ये जल्द को नरम मुलायम तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरुन की ये सारी चीजें कम होने लगती है, जबकि जल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होती है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास अज्जा, जैसे कि आप जानते हैं एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क, ये जनाब आपकी जल्द की जो है ना हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे यानी कि सोने से पहले। और उसके अलावा अपना फेस वॉश करना चाहते हैं, अच्छा सा कोई साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए साबुन भी है और फेस वॉश भी है। बिल्कुल जी, अब आप लोगों के ऊपर ये चीज आ जाती है कि आप साबुन लगाने वाले लोग हैं या फिर फेस वॉश लगाने वाले लोग हैं। तो जो लोग साबुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश का ब्यूटी सोप आप लगा सकते हैं, जो कि एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है। अगर हम यहाँ पर व्हाइटिश के फेस वॉश की बात करते हैं तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है ये विटामिन सी और विटामिन ई से तैयार किया गया है जनाब। ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। और उसके अलावा ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए और बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। तो व्हाइटिश का साबुन लगाना चाहते हैं तो साबुन लगाएंगे, फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो फेस वॉश लगाएंगे, ये चीज भी यहाँ पर क्लियर हो गई। उसके अलावा यहाँ पर चलें जी, जो लोग नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है, क्योंकि आप डेली बेसिस के ऊपर कोई काम करते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई इन गर्मियों के मौसम में जरा हमें मेकअप से छुटकारा मिलना चाहिए, तो मेकअप से छुटकारा मिल जाएगा जब आप व्हाइटिश लवली क्रीम के जाने आने वाले हैं। तो व्हाइटिश लवली क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि फेयरनेस फार्मूला है, और सिर्फ फेयरनेस फार्मूला ही नहीं बल्कि जनाब इसके अंदर जो है ना इतने सारे अच्छे अच्छे जो है ना वो विटामिंस के कैप्सूल्स ऐड किए गए हैं, यानी कि 30 विटामिंस के कैप्सूल्स ऐड हैं, जिसमें विटामिन B3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और रेडियंट अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है। और साथ ही साथ बात यहाँ पर खत्म नहीं होती जनाब, जब व्हाइटिश लवली क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को एहसास होता है कि व्हाइटिश लवली क्रीम के अंदर बिल्कुल जी सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। और सनस्क्रीन ऐड करने का मकसद ये था कि अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि भाई अगर आप थोड़ा बाहर निकलते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको जो सूरज के ये खतरनाक असरात पड़ते हैं आपकी स्किन के ऊपर, तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे की रंगत जो है वो डल होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी स्किन पर जो है ना वो आप कोई भी सन ब्लॉक लगाते हैं वो आपको सूट नहीं करता, तो व्हाइटिश लवली क्रीम के अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि वो आप लोगों को जो है ना वो डबल फायदे देने वाला प्रोडक्ट है। तो ये कोई भी इसके अंदर एज लिमिट भी नहीं है, आप इसे घर में हर एक फर्द इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द हो, ख्वातीन हो, हर कोई लगाएंगे। अगर आप डेली बेसिस पर कोई काम करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस सूरत में आपको व्हाइटिश लवली क्रीम जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ना ये भाई बहुत अच्छी क्रीम है, तो मैं तो चाहती हूँ कि ये क्रीम हर एक इंसान के पास होनी ही चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट तो हर एक इंसान जो ना वो डिजर्व करता है। तो बिल्कुल जी, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा परेशान है कि भाई हमारे चेहरे पर जो है ना वो एक्नी बहुत ज्यादा आ चुके हैं, एक्नी आते रहते हैं, और जब गर्मियों का सीजन आता है तो जाहिर सी बात है एक्नी को जैसे ऐसा समझ लें कि कोई वेलकम ही बोल देता है। तो अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी काफी ज्यादा आते रहते हैं, एक्नी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो आपके लिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए, उन मर्द हजरात के लिए जो टीनेजर्स हैं या फिर जिनकी उम्र भी बढ़ चुकी है लेकिन एक्नी नहीं उनकी जान छोड़ते, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल करेंगे। ये इतना परफेक्ट है ना कि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो इतनी कूल हो जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है, आप लोगों को इतना मजा आ जाता है कि जब आप खुद ही लगाएंगे तो आप लोगों को जो है ना वो एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर सारी जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं जो कि आपके चेहरे के एक्नी हो, एक्नी मार्क्स हो या फिर चोट का

9 0 5 9 5. ஓடி 9 0 5 95. ओके जी, सो ये हुई बात वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की. अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा. गाने सुनेंगे अच्छी अच्छी वाली. और मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है, सवाल कुछ यूं पूछा है कि आप मुझे बताएंगे आलू के अलावा कौन सी सब्जी है जिसके अंदर बीज नहीं होता, ये बताइए जल्दी से. आते हैं आपके मैसेजेस की जानिब. क्या कह रहे हैं देखें तो जरा.

चाचा खालिद कहते हैं व्हाइट एज लवली क्रीम लगाने से ताने मिलना बंद हो जाएंगे। बिल्कुल जी बंद हो जाएंगे, आप लगाएं तो सही। ओके जी, मिथल माकूल हमारे साथ मौजूद, कहते हैं माशाल्लाह योर शो, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई कहते हैं सिद्रा अच्छा तव्हां खे मुंहिंजो आवाज़ वणे थो, सो थैंक यू सो मच। प्यारे भाउ जो मोहबतूं आहिनि जो तव्हां असांजी आवाज़ जी ऐं असांजे हिन प्रोग्राम जी तारीफ़ कंदा आहियो। और ज़वार मोहम्मद बसल शंबानी भाई हमारे साथ मौजूद, देखो शामदीद कहते हैं एस नार बाणी आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम, कहते छा हालत है, खुश आई सफ़ा चाक चंगी भली, यस तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो। और ज़वार अली ॾिनो अबासी हमारे साथ हैं, हेलो भाई। उदास लड़की आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, ओलाड सलामत, कहती माशाल्लाह आते ही। हाँ जी भाई देख ले। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं विलेज मोहम्मद उस्मान ब्रोही सकरन से, कहते अली अकबर ब्रोही भाई वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम गुड, मुस्कान सॉन्ग सुनाए। जी जी गाना सुनाते हैं आपको, बोले कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। ओके जी, आप सब लोगों ने ना पोस्ट को लाइक और शेयर भी करना होता है, लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं ऐसे लोग जिनके हाँ जो है ना उनको नहीं पता कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जितने भी ये प्रोडक्ट्स मैं आपको प्रोग्राम में बताती रहती हूँ वो मार्केट में कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं, उनको लगाने चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट वो क्यों लगाएंगे, या फिर अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के मुताबिक है, ये अगर वो नहीं जानते तो उनको भी पता चल जाए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आप इस्तेमाल करते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि हमेशा के लिए लॉक भी हो जाएगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम हो, ये जनाब बहुत ही अच्छे वाले सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा।

मामा जमान सही कह रहे थे कि आपका इतने नाम याद है, कहीं आप कुक तो नहीं? क्या बात है, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं बताएं तो। ओके जी, साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। शो नाइस अदी, थैंक यू सो मच भा। और लुबी कहती हैं कि तुमको सुन लूं तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, जाने के इस धुन से तुम लफ्जों को अदा करती हो। आए हाय अच्छा मोहम्मद जमान, आप हमारे साथ कहते शो वीआईपी है आरजे की तरह, और टॉपिक का जवाब दिया है। ओके

अच्छा अदील तव्हां कल्ह कहिड़ो गानो चयो हुयो उहो गानो अॼु ॿुधंदासीं उन गाने जा थोरा मूंखे लफ़्ज़ यादि नथा अचनि मूंखे ॿुधाए त उहो हलायूं था यासीन खन हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम कहते हैं फहीम शेख लिखते हैं कि जो जाहिर हो जाए वो दर्द कैसा और जो दर्द समझ ना सके वो हम दर्द कैसा आए हाय अच्छा मिठल माकोल आपने टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है जी बहुत बेहतरीन मुजाहिद कहते हैं सिडो जी सवाल का जवाब है ओके यानी कि आज मुझे लग रहा है कि सारे लोग ही होशियार हो गए भाई प्रोग्राम में सही है बाबा सुठी गाला

ओके देखिए आप आते बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए इतने शानदार किस्म के जो है ना वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर भी मिलने चाहिए ताकि हमें लेने में आसानी हो, तो उसके लिए आपने डायल करना है जनाब 03-15-799-0595 बूढ़ी 300 15-79-595।

क्या बात है जी, क्या बात है। सोनो भी बड़ा नखरा तो करे। अदील कहते हैं कि टॉपिक ओके ओके जी, ठीक हो गया। और फिरोज अली बिरोही हमारे साथ हैं, हाय। दर्द दिल कहती है कि सबने टॉपिक का जवाब दे दिया, अब मैं क्या जवाब दूं। तुम भी कुछ ना कुछ लिखी दो, हिस्सो तमाम जो भी हुजन जरूरी।

ओके जी, नूर चांदी हो हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। नूर चांदी को भी खुश आमदीद कहते हैं वेलकम के साथ साथ। ओके जी, और साथ साथ नूर चांदी कहते हैं नक कर। अच्छा नजीर खुजो में सुन रहे बलोचिस्तान से खुश आमदीद कहते हैं। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो किसी सिले या तारीफ की उम्मीद रखे बगैर दूसरों की मदद करें, सच्ची खुशी बांटने से ही मिलती है। ओके जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमारे साथ शेयर कर दी है, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अशफाक खुड़ू हमारे साथ मौजूद है। हेलो। और जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है महर इरफान सियाल साहब, कहते हैं नाइस योर ग्रेट होस्टिंग में मार्जे नाइस प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे वाले प्रोडक्ट्स हैं और एक एक प्रोडक्ट जो है ना वो भाई प्यार से और सलीके से और तरतीब से तैयार किया गया है। वो हर एक इंसान से जो है ना वो रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप दुनिया में देखते ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी एक ख्वाहिश होती है, विश होती है कि भाई मैंने जो है ना ये वाला प्रोडक्ट लगाना है या फिर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं लगाना चाहता हूँ लेकिन सूट नहीं करता मेरी स्किन के ऊपर। तो भाई आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना उनका इंतखाब कर सकते हैं। वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को जैसे हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये चीज भी है कि भाई आप लोगों के हिसाब से ही तैयार किए हैं ये प्रोडक्ट्स और ऑल स्किन टाइप के लिए। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप जरूर से इस्तेमाल करके देखिए और ना मिलने की सूरत में आपने जो है ना वो नंबर के ऊपर रहा एक मरतबा लाजमी करना है। ओके जी, यासीन खंड बिल्कुल आपकी फरमाइश लगा देंगे जी, टेंशन ना लें। क्या बात है जी, समोसे खाए जा रहे हैं, एंजॉय करें। और निधि कहती हेलो हेलो, ये चीज भाई कभी खत्म ही नहीं होने वाली, आप टेंशन ना लें, बस आप सीधा ब्लॉक मार दिया करें। मोहम्मद ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम सेठा जासी, आप हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू। और उनका अलावा जेके भी मानू असा के बुधन पया सबनी जो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम में शामिल थी ना वनो आई असा ने पोस्ट के लाइक शेयर करना वनो। अहद अबासी भी असस अगर मौजूद आए तवा जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुधो पया। वालेकुम अस्सलाम। और यहां पर टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो न्यूज़ ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: GAFM 88
2: सिंध की आवाज।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: ईरान ते हमला अब हुरमस में सामूरी जहाजन ते थियल हमलन जो रद्द अमल आहिन बीहर अड़ी कार्रवाई थी तो नतीजा वधिक सख्त हुंदा। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त खेस नथो लगे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताकत बची आहे। ईरान सां जंगबंदी मुआहिदो खत्म थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे।
5: आबना हरमोन अमेरिकी धमकियुनि सां बि पर ईरानी इंतज़ामनि तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिकी धमकियुनि खां नथा डिॼूं। आबना हरमोन ईरानी इंतज़ाम ख़ुदमुख़्तियारी तहत खोलियो वेंदो।
6: अॼु ई माण्हू जेकी ट्रिपल मर्डर केस में मुलविस आहे, जेकी कस्टडी मां निकिता, उहे उन्हनि जा कज़न्स, उन्हनि असांजी ट्रेक्टर हले पियो ज़मीननि ते, उन ते हिननि फायरिंग कई आहे ऐं फायरिंग करे असांजे कज़न खे हिननि क़त्ल करे छॾियो आहे। मौक़ुफ़ त इहो ई त ज़ाहिर आहे, मां पहिरियां बि चयो त हिननि खे हिकिड़े क़िस्म जो लाइसेंस ॾिनो वियो आहे न। टे इंसानी जानियूं गिड़काए विया ऐं हुननि जी कुझु बि न थियो त हू सम्झनि था त हू ऑल इन ऑल आहिनि न, हू जेको वणे कंदा हिननि खे। हितां जो कानून कुझु बि नथो करे सघे। सो अॼु हुननि वरी चैलेंज कयो आहे कानून खे, ॾिसूं था त हाणे छा थो थिए। पर हिननि तमामु वॾो नुक़सान करे छॾियो असांजो। वरी ॿीहर पाण ॾिसूं था, सुबुह खां अधु फायरिंग हले पई, पुलिस टाइमली रिस्पॉन्ड न कयो, जंहिंजे करे ही हेॾो वॾो नुक़सान थी वियो आहे। पुलिस खे असां बार बार
4: हथियारबंदनि जी फायरिंग में उमिर बाब चांडे जो सोट कतल, उमिर बाब जे टिणे कतल केस मां वरी जवाबदारनि जे कतल जो इल्ज़ाम। घोट गुंगो पीर वारे इलाइक़े में गोलियूं लॻण सां रियाज़ चांडियो मारिजी वियो। उमिर बाब चांडे चवण आहे त सोट ज़मीन ते ट्रेक्टर हलाए रहियो त जवाबदारनि हमिलो करे खेसि क़तल कयो। जवाबदार समझन था त ट्रिणे कतल केस में बरीथण कानून खे कुछ नथो करे सके।

0: नेप टाइम खाते के 1990 का जून 2020 ताई जे मुलाजमन जो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। नेप पारा भर्ती थियल समूरन तदरीसी ए गैर तदरीसी मुलाजमन जो तालीमी काबिलियतन जो रिकॉर्ड तलब कयो वयो। तालीमी खाते समूरन लागापियल इदारन ने जिले तालीमी अफसरन के खत लिखी छो। खत में हिदायत कई वही त हफ्ते अंदर रिकॉर्ड माणियो वे। रिटायर्ड मुलाजमन जो भी समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वयो आहे।
1: गढ़ी खेरो के शाखन में पानीकोट खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज। आबादगारन जो चवण है बेगारी किनार में निकरंदड़ ताजा शाख ईंधन शाख लोन माइनर सेरवा में पानी घट है। जो पानी है आपासी अमलदार पैसन एवज विक्रो कर रहा है। नोटिस वी शाखन में पानी फराहम कर नुकसान का बचाया वे।
0: सिंध के मुख्तलिफ इलाकन में औरत समेत तीन जन लाश हथ। ठरी मीरवा के गोठ तारकू भरसा केनाल माण जातल शख्स जो लाश मिलो। रोड़ी में स्टेशन रोड तान जातल शख्स जो लाश हथ। अस्पताल मुंतकिल कुंडरी में पानी की टैंकी माव जो लाश मिलो। वारसन पारा कानूनी कार्रवाई का इनकार।
1: वेझो अंडतल गाड़ी की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार फोत। हादसे में 45 साल यासर पुट उमर फोत मड़ अस्पताल मुंतकिल।
0: कनकोट में 5 दिन अग शाही वाह में बुदी वयल लीगर जो पतो न पयो। डीसी ऑफिस आलो धरणो। मुजीब ला गोलो जे वारसन ए सियासी समाजी कारकुनन डीसी ऑफिस आलो धरणो हणी रोड बंद करे छो। मुजाहिरीन जो चवण है इंतजामिया बुदी वयल नौजवान की गोला में मदद नथी करे। नोटिस वठी नौजवान की गोला कई वे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी हाँ अवे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन नहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर से सुबह जो 9 वगे का रात 8 वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। राबते 0385569

0: ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
4: अचन पयो उनन के बेहतर करे सके थो इन विच वाले सिस्टम के
5: मटियारी सकरन मेहराबपुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। यहाँ पर जितनी भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाती हमारे साथ है, तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, सो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है उन तमाम लोगों को वेलकम करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम का जब दूसरा घंटा स्टार्ट हो जाता है तो उसमें फिर आप लोगों को हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो बिल्कुल जी, अभी बारी आ चुकी है कि आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाए। ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोग जानते हैं कि सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्या खास बातें हैं तो ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताते ही चलो कि जिन लोगों की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि भाई हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट है, तो उनके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम है क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर स्किन के हिसाब से तैयार होने वाला प्रोडक्ट है। और उसके अलावा एक और मजे की बात भी आप लोगों को बताती चलूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब विटामिन ई बीड से तैयार की गई है। इसके अंदर माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन भी मौजूद है। और उसके अलावा जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाज़े नताइज देती है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ दो दिनों में वाज़े नताइज के लिए आप डी स्किन वाइटिंग ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जदीद अज़ा से तैयार की गई है, जैसे कि जिसके अंदर जनाब शामिल किए गए हैं अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन और उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं विटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी स्किन जो है आपकी जल्द को चमकदार बनाने के लिए जनाब, तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जो है ना वो मॉइस्चराइज रहे और आपकी स्किन के अंदर जितनी भी नमी है वो भी खत्म हो जाए, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो अच्छी अच्छी हो जाए, प्यारी प्यारी हो जाए, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हज़रातों, ख़वातीनों, हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप लगा रहे हैं तो साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश भी ट्राई करना है। तो डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है जो कि हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। और डी स्किन वॉश जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, क्लीन हो जाती है और हाइड्रेट हो जाती है। तो इतनी अच्छी और इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद है जो कि फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किए गए हैं। तो आपको चाहिए कि आप इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा ताकि आप लोगों को रिजल्ट मिले, वो भी बहुत अच्छा वाला, शानदार वाला, और आप ग्लो करते रहें और आपकी खूबसूरती लोगों को बोले कि देखो भाई देखो ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। ओके जी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए तो उसके लिए आपने डायल करना है 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-5595। सो ही नंबर आहे जेको तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे। अगरि तव्हां डायल कंदा त तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर्स ते, तव्हांजे ॻोठनि में, तव्हांजे शहरनि में, हर जॻह ते ही तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा। सो अवेलेबल करायो ऐं ख़ूबसूरती खे हेलो हाए चओ, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे ख़ूबसूरती जे मुताबिक आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻायो, ठीकु आहे। ऐं इन खां अलावा मूं तव्हां खां सवाल पुछो आहे त मूंखे ॿुधायो आलू खां अलावा कहिड़ी सब्ज़ी आहे जंहिंजे अंदरि ॿिज नाहे हूंदो। हाणे हिन जवाब तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा वञो था ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो था ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल थियो था। 888-1 ते जॉइन कयो ऐं फेसबुक ते जॉइन कयो। उन खां अलावा फेसबुक वारा जेके प्यारा माण्हू उहे पोस्ट खे लाइक शेयर कंदा हलो। जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा अच्छे अच्छे वाले गाने हमारी लिस्ट में मौजूद हैं। तो हम जरा ऐसा करते हैं कि गानों की जाने भी आ जाते हैं। ये गाना है जी चमन मिराली की आवाज में।

अच्छा निधि कहती है हाँ ये सच है, वैसे मैंने जब से डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना स्टार्ट की है तब से आई एम वेरी प्रिटी। हाँ जी बिल्कुल ये निदड़ी हमारी बहुत खूबसूरत होती जा रही है कुड़ी। और नूर चानू क्या कहते हैं कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारी नहीं होती, हम सिर्फ कुछ अरसा उनके साथ चल रहे होते हैं फिर एक दिन जिंदगी आकर कहती है अब वापस करो ये तुम्हारा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल जी।

जी जी चाचा तव्हां इहो नंबर डायल करे सघो था। नंबर डायल करण खां फौरन बाद तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर्स ते दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल कराए सघो था। तो लाज़मी तव्हां हिन नंबर ते राबितो कजो, ठीकु आहे। अदील खे तोखे मुंहिंजे वस में न आहे, मां मजबूर आहियां डेडिकेट अवां खे ऐं सभिनी लिसनर्स जे नाले। चलें जी, मां कोशिश कयां थी तव्हांजी पसंदि जा गाना हलायूं था। हा त पासे लिखते हैं कि या सताती है अब भी उसकी अहद, जिक्र करना छोड़ दिया जिसका। और कहते हैं कि क्यों याद आता है भूला हुआ शख्स, टाइम सां विसरी वेंदो तव्हांखे। ऐं जेतिरो अटैचमेंट हूंदो न ओतिरो इंसान तव्हां खां थोरो आराम आराम सां विसरंदो वेंदो आहे, पर वक़्त ते विसरी वेंदो आहे। टेंशन न वठो।

छोकरी जेड़ा न कंदा कयो बाबा दिसो ला साई डोरी न थो न खाला वा तमा प्रोग्राम बुधो पया वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो आप इस्तेमाल करते रहे हैं और इस्तेमाल कौन सा प्रोडक्ट आप कर रहे हैं मुझे ये भी बताइए और साथ साथ खूबसूरती कहां तक पहुंची ये भी बताइए जरा। और अल्ताफ अलो जाग जानी चाचू हमारे साथ है कहते प्लीज मिले आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए डेडिकेट आपने किया है अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी ओके चाचा लगाने की कोशिश करते हैं आपका गाना भी और चाचा खाली जूनी जो हमारे साथ हैं तमाम भी गानों लिखे हुआ बिल्कुल अलायूं था लिखो था टॉपिक अच्छा चलें ठीक है और हमारे साथी जी सलाम डियर आरजे सिद्रा जी खुश हो जो आमीन मिस्किन महबूब अली मल्हा अब्दुल कादर मल्हा अब्दुल समद मल्हा अजीम सिटी सकरन से आप हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद करते हैं और वफा अब्दुल गफार खास के लिए एंड खादिम हुसैन खास के लिए एंड साजिद अली खास के लिए हैं कहते हैं आप कैसी हैं भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप बताएं आप सब भाइयों को वेलकम करते हैं और उनके अलावा मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी टॉपिक है पोटैटो सब्जी के अंदर बीज नहीं होता वो तो मैंने बताया ना आप बताएं आपको क्या लगता है पोटैटो के अलावा कौन कौन सी सब्जियां हैं हद करें चली ना कदें कदें अच्छा

जी और ये हमारे साथ हैं। अच्छा चले महबूब अली मला भाई तव्हांजो वराए मैसेज अची वियो आहे, सो थैंक यू सो मच। और हैं जी विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन हिंगोरजा, नहीं दिलावर हुसैन सोलंगी। बाजी आप कैसे हैं? टॉपिक अच्छा सही सही, वैसे ये सब्जियों तो ना आहिनि, ये सब्जी में एड थींदियूं आहिनि, मतलबु मूंखे एतिरो लॻंदो आहे, वधीक ख़बर कंहिंसे। भाजी शीला गुल का गाना तो सुनाइएगा, डेडिकेट नज़ीर सोलंगी, एडवोकेट अब्दुल सतार सोलंगी, अलीजान सोलंगी, मुदस्सिर सोलंगी, आसिफ एंड अल्लाह वसायो सोलंगी जी नाले। चलें सब भाइयों को वेलकम एंड खुश आमदीद। और हमारे साथ रसूलाबाद से आबिद हुसैन शंबानी, वालेकुम अस्सलाम। अदी टॉपिक इस ओके आबिद हुसैन शंबानी भाई आपको वेलकम एंड खुश आमदीद करते हैं। और साथ साथ बताइए जरा जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की या फिर अभी सिर्फ सोच रहे हैं? और मुनव्वर अली मुगल हमारे साथ ही मीरपुर खास से कहते हैं, बहन असलाम है आपको, लाड़काना में इतनी गर्मी में आप शो करती हो, बोलती हो हम लाड़काना जाते हैं तो गर्मी में हमारी बोलती बंद हो जाती है। भाई ऐसा रही रही नहीं को ना, आदि थी वह आयो, हम आदि हो चुके हैं भाई इस गर्मी के, तो हमें कुछ नहीं होता। और मुनव्वर भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत दिनों के बाद आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बने हैं और आपको दिल से खुश आमदीद। और कहते हैं मुनव्वर अली मुगल, बहन मेरी बेटी मासूमा और गाजिया आपका प्रोग्राम शौक से सुनती हैं, बहन आपका प्रोग्राम 5 से 6 वाला जो है ना मीरपुर खास स्टेशन पर भी चलाया जाए। तो वो ये बात है कि स्पॉन्सर्ड शो है ना, तो वो उनकी मर्जी होती है कि वो जहां जहां चलाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मीरपुर खास में भी चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं।

जी जी क्या बात है, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। यासीन गुडारू हमारे साथ सकरण से, सलाम अलैकुम। उम्मीद आहे अवां भी खुश हुंदा, इयां ही खिलंदा रहो। थैंक यू सो मच प्यारा भा, तांजी दुआओं खपन। इरम कहती हैं, मेरी प्यारी दिलबर दोस्त जवाब है, अच्छा चलिए गाने की फरमाइश कर दी, मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। और राशिद अवान हमारे साथ ही फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं, सिस्टर सिद्रा जी ऐसे ही मुस्कुराती रही, आमीन, प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। आजकल तो सवाल कुछ आज मैंने वाकई यही सोचा कि आज बहुत एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगी। और देखिए जब मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है तो सारे लोगों ने जवाब दिया है, वरना कुछ गिने चुने लोग हैं जो जवाब देते हैं। तो बस ठीक है, मैंने सोचा है कि आगे से आप लोगों से जो है ना वो सिंपल सिंपल से सवाल भी पूछा करूंगी। और राशिद अवान फ्रॉम मेहरापुर से कहते हैं, सिद्रा जी चले राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। और बताएं मेहरापुर में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं?

ओके जी, क्या बात है किशोर भाई, क्या कहते हैं, जवाब भाई, जवाब देना जरूरी भी नहीं होता, सारी चीजों का जवाब मत दिया करो। ये चीज मैंने जिंदगी से सीखी है कि भाई सारी चीजों का जवाब एक इंसान को नहीं देना चाहिए। आपने बहुत मरतबा जो ना खामोशी अख्तियार करनी, लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा मौका मिले कि जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर बोलना जरूरी है, तब बोला करे, वरना खामोश रहे बेहतर है। अच्छा समाटू गोपांग हमारे साथ मौजूद हैं जी। हाय, वालेकुम अस्सलाम, कंबर सिटी से आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं। आपने गाना लिखा है, चलिए टाइम बच गया तो आपका गाना लगा लेंगे। और नखा इलावा हैं जी हमारे साथ, फहीम कहते सिद्रा लोग अच्छा लाड़काना वालों की शिकायतें करते हैं, कैसी शिकायतें करते हैं बताएं जरा मुझे। और नखा इलावा बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे लोग और सारे लोगों का एक एक मैसेज, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मूवीज जी ना मु डिसन छडे दिनियो आए नहीं, ड्रामा भी डिसन छडे देना है, पर अगर एड़ी घणी मूवी जेका सफा हिट वेंदी आए पो मड़ई उन जो एक्सप्लेनेशन डिसी वठंदी आए, खबर पटी आए त बाबा मूवी छाने जी स्टोरी चाहे सो खबर आ त या मूवी की आए उन जो कंटेंट चाहे आई थोड़ी अजीब ही लगी। अजकल जे गवान डठो वने त मूवीज जकी अचन थियो, मतलब मां जेका शे नोटिस कया त ई नाए त जी पेरिया मूवीज हुंदी बाबा उन जी हैप्पी एंडिंग थी वेंदी बस गाल खत्म थी वेंदी, लेकिन हाने या त मूवीज जकी अचन थियो उन जी एंडिंग ही नाए बाबा, वरी ता इंतजार के उन जो नेक्स्ट पार्ट इंदो, वरी हे थिंदो, वरी हो थिंदो, सस्पेंस में छड़े दियो था मानन के, इन करी ऐसा डिसन ही छड़े दियो से ना बाबा, टाइम वेस्ट आ भी कुछ नहीं।

रहोगे जी हमारे साथ यहाँ पर, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं। बिल्कुल जी, सारे मैसेजेस जो है ना वो आपके रीड रखेंगे, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम जो है ना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं, और उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ, और आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: ये FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-8051
1: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9
3: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहराबपुर 0301-38-65453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836
9: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

नाम सुन रही है व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। और उसके अलावा यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लेग में। तो जिन लोगों ने अभी सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

जी क्या बात है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर सुन रहे हैं जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में सिर्फ सुनना ही काफी नहीं होता ना मेरी जान, आपने इस्तेमाल भी करने हैं। तो अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए। अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03157990595। बड़ी 1315-9095। सो जल्दी से ये नंबर डायल कीजिए और अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल कराते जाइए।

भी स्मार्ट हो गोपांग, आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, बहुत बेहतरीन। अनवर भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और यासीन खान कहते हैं आपके शो में गाने बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आदिल कहते हैं मैंने इसलिए तो जवाब नहीं दिया ना। चलिए जी, बहुत बेहतरीन। और जावेद अली रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, हेलो। फहीम कहते हैं सिंपल सवाल का जवाब देने में मजा नहीं आता। हाँ जावेद, अच्छा ही सॉन्ग खींची फरमाइश, आई सुन था। ओके, शायद बबर जी आवाज में गाना आया।

ॿारनि खे थोरी पाण बि त महिनत करणी पवंदी न बाबा, थोरो पाण हथ पेर हणो जी तव्हांखे बि मिली वञनि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन फेस वॉश। अगरि तव्हां वेही सिर्फ़ु चवंदा त बाबा असां वटि मिलनि कोन था या असां किथां वठंदासीं, तव्हां हिकिड़ो कमु कयो न, जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां थी उन नंबर ते बसि तव्हां राबितो कयो ऐं उन्हनि खां पुछो त बाबा हिते हिन फलाणी जॻह ते असां अवेलेबल कराइणु चाहियूं था, अवेलेबल करायो। जे उते अवेलेबल तव्हां नथा कराए सघो त असांखे ॿुधायो त असां किथां वञी वठी अचूं, ठीकु आहे? इहो एतिरो कमु बसि तव्हांखे करिणो आहे। सो नंबर ते तव्हां कॉल कयो या फिर मैसेज कयो। अगरि तव्हां कॉल कयो था त प्रॉपर कॉल करे उन्हनि खां पुछो, अगरि न त तव्हां मैसेज छॾे ॾियो हिकिड़ो, ठीकु आहे? तव्हांखे रिप्लाई मिली वेंदो।

अरे भाई चाचा कैसी बातें कर रहे हैं हर जगह डीएसकिन ब्यूटी क्रीम मिल रही है। और अनवर भाई के हाणे केड़ो मसरूफियात आए असां के भी खबर पवे। बस भा प्रोग्राम कयूं था। मोहम्मद जमान भाई हमारे साथ हैं।

झगड़ा। ओके जी, मलिक मोहम्मद आदिल हमारे साथ हैं। जनाब वालेकुम अस्सलाम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बिलाल कहते हैं, मरना उस पर चाहिए जो मरने ना दे। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। और एम अंसारी कहते हैं, सलाम ऑल, आज सफर में हूँ, सोशो मिस हो गया लेकिन जी जी बिल्कुल, मार की आपके ऊपर बड़ी मेहरबानियां हैं। और कहते हैं, सो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, प्ले सॉन्ग लाइया लाइया में तेरे नाल ढोलना, लास्ट में किसी अच्छी सी पोइट्री के साथ। चलिए, अगर इस प्रोग्राम में ना हो सका तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में आपकी जो फरमाइश ना वो पूरी कर देंगे, ठीक है। वैसे आज आप थोड़ा लेट हो गए ना, तो लिस्ट फुल हो चुकी है, तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में लगाएंगे। और सुमाटो गोपांग कहते हैं, चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी बात पर आप मुझे ये बताइए, कंबर में आपने मालूमात ली कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं? और डी स्किन का फेस वॉश जो है ना, ये अभी अभी जो है ना वो जगहों पर अवेलेबल होना स्टार्ट हुआ है, तो आप जो है ना वो अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, उनसे मालूमात लीजिए कि डी स्किन फेस वॉश आपके यहाँ अवेलेबल है अभी तक या फिर नहीं। और डी स्किन का फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो मतलब यकीन जाने, गारंटी से मुझसे मतलब आप कहलवा लें कि डी स्किन फेस वॉश इतना कमाल है, इतनी उसकी क्वालिटी

और लियाकत अली अब्बासी हमारे साथ है, माशाल्लाह आरजे सिद्रा मुस्कान अदा रिजवान के सलाम चवंदा हैदराबाद कासिम आबाद का तमासा सगर मौजूद है। ओके जी सो मोहब्बत प्यारे भाजू तमाम प्रोग्राम बुधो पया।

ये न क्यों बाबा, ये न क्यों। अच्छा हमारे साथी, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान। और कैसी हूँ जाना, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात को और स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, हमारी फजीला सिंधी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फजीला। और ये हमारे साथी, अस्सलाम वालेकुम आपी, आप कैसी हो। मैं तहमीना हूँ और टॉपिक का जवाब आलू है। आपी और भी जवाब है, बस ये जवाब काफी है। और आपी, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पोइट्री सुनाना। चलें पोइट्री में 5 बजे वाली प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली सुनाती हूँ, तो बस वो वाला प्रोग्राम जो है ना आप ज्वाइन कीजिएगा। और हमारे साथ हैं यहाँ पर वरियाम अली, कहते हैं सिद्रा हम भी सुन रहे हैं आपका प्यारा शो, थैंक यू सो मच वरियाम, खुशामदीद कहते हैं आपको। और मासूमा और गाजिया मीरपुर खास से आप भी। अच्छा कहते हैं आप उर्दू और सिंधी दोनों साफ बोलती हैं, आपकी कौन सी जबान है असल। माँ सिंधी आया अल्हम्दुलिल्लाह।

ओके जी, सो आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। अगर मां हिकड़ो मिंट भी चुप करे वेही ना त तव्हां चवंदा छो चुप करे वेठी आहे, ॻाल्हाए नी। ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणो था कोन, मूंखे ॿुधायो त सही, ख़बर त पवे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी खूबसूरती खे वधाइण वारो प्रोडक्ट आहे, ऐं हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी, जेका मूंखे तमामु घणी सुठी लॻंदी आहे, त ख़ासि करे ॾिठो वेंदो आहे त जंहिंजी स्किन घणी सेंसिटिव हूंदी आहे न, त सेंसिटिव स्किन वारा जेके माण्हू हूंदा आहिनि उहे वीचारा घणो परेशान हूंदा आहिनि, करिणो पवंदो आहे ऐं सुठो प्रोडक्ट तलाश करण में। त उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम तयारु कई वई आहे, जेका तव्हांजी जेका न खूबसूरती खे वधाईंदी। तव्हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, इहे डॉक्टर्स खां पुछा करे डॉक्टर जी निगरानी में तयारु थियल आहे, हुन जे अंदरि कोई बि अहिड़ो चांस न आहे त को केमिकल तव्हांखे मिली वेंदो, तव्हांजी स्किन खे वीआईपी सफ़ा गोरो चिटो वीआईपी बणाए छॾींदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे, ॿई सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहे, जॾहिं तव्हां लॻाईंदा त तव्हांखे अहसासु थींदो असां वॾेरनि वारा प्रोडक्ट हणूं था। त तव्हां ट्राए करे ॾिसजो, तव्हांखे मज़ो अची वेंदो।

अच्छा शायद बबर जी गाने जी फरमाइश चाचा खाले जुने जी जी हुई शायद मुझे ख्याल में और ए एम अंसारी कहते नह लाइंदो तो अल्लाह पुजंदे जस्ट किडिंग शामा भी न प्ले कंदा तभी को मसलो ना है अल्लाह रे ए मथे ते चाड़ी छनी दो मुगे अच्छा दर्दी दिल कहती हां टॉपिक चंदा सही है भाई सही है सही है और अदील कहते हैं बिना ओके जी थैंक यू सो मच ओके जी बिल्कुल नफरत नहीं किया करें अच्छी बात है मोहम्मद समान कहते हैं दो चार हाँ भाई मोहम्मद समान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये तो पुता सब अमीर थी वनो

नहीं नहीं आदल ऐसा नहीं है, बस वो मैं ना आप लोगों के कमेंट्स देख रही होती हूँ कि भाई ये कहाँ तक है, और क्योंकि मैं ऊपर से कमेंट रीड करती हूँ ना तो बिल्कुल नीचे आ जाती हूँ, देखती हूँ भाई ये खत्म करें दीदा। और सजाद अली बलोच हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और अहद अब्बासी कहते हैं हाँ नेटवर्क शायद स्लो हों दो तमाम वट अच्छा बिलाल बिल्कुल तमाम अर्ज कयो हुयो पर मुखा तां जो अर्ज थोड़ो विसरी गयो सो तमाम जी फरमाइश 5 बजे या सुभाणे, सुभाणे त खैर जुमो आए बेडी हलाईंदासी ठीक है, तां थोड़ो टाइम असा अची करे याद यारींदा कयो मुखे, मां थोड़ो विसारू मानू आया गजनी मानू आया ओके सो हिते असा प्रोग्राम जो लास्ट ट्रैक लगाईंदासी जेको ओएसटी थियण वारो आहे, ओएसटी भी बुधंदासी बाबा। और किशोर भाई कहते हैं कौन थो हणादा अच्छा तमहा पोए डी स्किन जो फेस वॉश लगाए दिसो ठीक है मुझे जवण थे।

हाँ भाई, यहाँ तो सिद्धि से ही गाल आए. बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा गाना है जो कि यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं. प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जाता है मेरी जान व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है. जब आपको मजे आ जाएंगे तो आप लगाते रहिएगा. और अगर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो तो हर तरह के आप लोगों को प्रोडक्ट मिल रहे हैं. तो जो भी आप लोगों का दिल करिए, जो भी आप लोगों की स्किन के ऊपर सूट करे, वो प्रोडक्ट आप परचेज कीजिए और इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए. इसी के साथ डायल कर रहे हैं 03-15-79-05-95. अच्छा, लियाकत अली और उस्ताद गुलशन अली खाकरानी हमारे साथ ही लाड़काना से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा मुस्कान, हमें शनीला का गाना सुनाइएगा. शनीला का गाना आपको जो है ना वो मैं 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाती हूँ. जरा 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे जाने का वक्त करीब आ चुका है. सुहाणी तव्हां खां इजाज़त वठूं था, वरी इंशाल्लाह तव्हां सां मुलाकात मुंहिंजी थियण वारी आहे 5 बजे वारे प्रोग्राम में. सो 5 बजे खां 6 बजे ताईं वारे प्रोग्राम में मूंखे ज्वाइन कयो. ऐं हिते का ग़लती थी हुजे, कंहिंजो गानो न हलायो आहे, कंहिंजो मैसेज रहिजी वियो आहे, कोई अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हाए जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे, त हुन लाइ माज़रत कयूं था. सो पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखंदा. मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत. अलाह हाफ़िज़, बाबाई, लव यू ऑल.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ, कम
2: मरहम बनाने वालों

0: एक तरफ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनेई जो आखिरी रस्म जारी बे तरफ ईरान ते अमेरिकी हमला हमलन में 14 ईरानी शहीद गुलिस्तान सूबे के अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिजाइल फायर कया वया मुशाह तरफ ईंदड़ बिन पुलन ते हमला अमेरिका सेंट्रल कमांड चयो आहे ते फिजाई हमलो मरहलो कयो वयो ईरानी दिफा निज़ाम मिजाइल एंड ड्रोन ज़खीरन ते हमला कया वया बंदर अब्बास ऐं चार बाहर में स्ट्रीक जेक ठिकाणनि ऐं रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो।
1: ईरान जो अमरीका खे भरपूर जवाब, खिते में अमरीकी फौजियुनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। पाकिस्तान इनकलाब जो चवण आहे त कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो आहे। कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप अरफिजान ऐं अल इस्लाम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में अल जफीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते बि हमला कया विया। कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिज़ाइल ऐं ड्रोन्स किराइण जी दावा।
0: ईरान ते हमला अपने हर्मुज में सामुंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रद अमल आहिनि। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी, नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त खेसि नथो लॻे ईरान में अमेरिका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंग बंदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान न आहे।
1: अमरीका खे वाइदनि जी भञकड़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अपना हुर्मज अमरीकी धमकियुनि सां बि ईरानी इंतज़ामनि तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ चयो आहे त अमरीकी धमकियुनि खां नथा डिॼूं। अपना हुर्मज ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़ुदि मुख़्तियारी तहत खोलियो वेंदो।
0: कार्ड तलब करे वरितो। नेप पारां भर्ती थियल समूरे तदरीसी ऐं गैर तदरीसी मुलाज़िमनि जूं तालीमी क़ाबिलियत जो रिकार्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़ीसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई त हफ़्ते अंदर रिकार्ड माणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकार्ड तलब कयो वियो आहे।
1: कड़ी खेरो जे शाखनि में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि जो चवण आहे त बेगारी केनाल मां निकरंदड़ ताज़ा शाक ईदन शापाशी मालदार पैसनि एवज़ विकिरो कनि पिया। नोटिस जी खोट आहे, जेको पाणी आहे आपाशी मालदार पैसनि एवज़ विकिरो कनि पिया। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां औरत समेत टिनि ॼणनि जा लाश हथ ठरी। मीरवा जे ॻोठ तारकू भरिसां केनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश मिलियो। रोड़ी में स्टेशन रोड तां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ। इस्पताल मुंतकिल कुंडरीअ में पाणीअ जी टैंकीअ मां ॿिनि ॿारनि जी माउ जो लाश मिलियो। वारसनि पारां क़ानूनी कार्रवाई खां इनकार।
1: मलीर में गुल अहमद चोरंगीअ वेझो अणॼातल गाॾी जे टकर में मोटरसाइकिल सवार फोत। हादिसे सबबि 45 साल यासिर पुट उमर फोत। मड़ इस्पताल मुंतकिल।
0: ऐं कंदकोट में 5 ॾींहं अॻु शाही वाह में ॿुॾी वियल लिंगर जो पतो न पियो। डीसी आफ़ीस आॾो धरणो। मुजीबला गोलो जे वारसनि ऐं सियासी समाजी कारकुननि डीसी आफ़ीस आॾो धरणो हणी रोड बंदि करे छॾियो। मुज़ाहिरीन जो चवण आहे त इंतिज़ामिया ॿुॾी वियल नौजवान जी ॻोल्हा में मदद नथी करे। नोटिस वठी नौजवान जी ॻोल्हा कई वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारनि ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03-20-18-00-003।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: It's time to commercial break.
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: यकीन होना चाहिए 70 माओं से बढ़ के हमें प्यार करती हैं. अगर मौजूदा लाइफ में हमारी जो हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं हो रहा होता तो इसमें उसकी कोई ना कोई मसलहत होती है. अपने सामेन को बताते चले, अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं लाइव कॉल के थ्रू, अपने होने का एहसास दिलाना चाहते हैं, 03136615688 डायल कर सकते हैं. और फेसबुक पेज पर भी प्रोग्राम से रिलेटेड कमेंट्स आप ड्रॉप कर सकते हैं. आपके कमेंट्स भी शामिल प्रोग्राम बनाएंगे हम. और उसके बाद जो है एसएमएस का तरीका, मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर. मोहम्मद समी कहते हैं, सलाम आप ही गुल फ्रॉम मीरपुर खास, वेलकम इन आवर शो. आप ही आज आपने स्टोरी बहुत अच्छी सुनाई. अच्छा, स्टोरी इतनी अच्छी थी कि स्टोरी में टाइम गुजरने का पता नहीं चल सका मुझे आज जो है ना. और ब्रेक में भी थोड़ा हम लेट हो गए. बहुत शुक्रिया मोहम्मद समी, आपको वेलकम. अब्दुल रजाक को भी वेलकम. भलीकार मोहम्मद खान कुम्भार, वफा जमाल कुम्भार, उम्मेद अली कुम्भार आई हालीपोटो स्टॉप से, शो नाई सदा मेहरबानी तमा जी. मोहम्मद ताहिर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो स्वीट आरजी गुलनाज बहना. वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप बताइए क्या हाल अहवाल है. सलाम देना नूर हुसैन तुनियो, चाचा खालिद जुनेजो और बाबू अदिल अबरू को. और मुझे आज एक कलाम चलाना जी. अच्छा, कौन सा है, लगी तो प्यार जे काबिल के, चेक करती हूँ. फरजाना बहार का सॉन्ग है. ओके, बहुत शुक्रिया आपका. आशिक खास के लिए अस्सलाम वालेकुम बहन, वेलकम करता हूँ. सेम टू यू अदा, थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. सॉन्ग सुनवा दें दिल जी. अच्छा, चेक करती हूँ ये कौन सा सॉन्ग है, अगर मिलेगा ज़रूर सुनाएंगे. रेहाना खान भक्कर से आपको वेलकम कहेंगे. रेहाना कैसी हैं आप, और सॉन्ग सुनाएं फौजिया सुमरो का. ओके अब्दुल रज़ा का, आई विल ट्राई टू प्ले फौजिया सुमरो. मोहम्मद ताहिर ब्लोच फ्रॉम आप जो है विलेज वलीदात खान से हैं. और सिठार जैसे नाइस प्रोग्राम में आपका सलाम देना. हालार विशाल साहब और नूर हसन तुनियो भाई को, अगर ये हमें सुन रहे हैं तो यकीनन वालेकुम अस्सलाम कहा होगा इन्होंने. आपने कहा बहुत अच्छी पैगाम कहानी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू. मोहम्मद ताहिर आपका, आपकी कॉल्स की जानिब भी मूव करते हैं. देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हो. जी अदा, क्या कह आपने मैसेज किया है. चले मैं चेक करती हूँ पैनल पे. ओके
1: पैनल पे
0: आई है
1: जी, दोस्तों
0: बदलना
1: भी याद बना दूँ
0: जी.
1: काचड़ी का गुलाम रसूल मरिया आजी सोलंगी काले पिलाशारी,
0: ठीक है. ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका. और आपने कुर्बान खास के लिए लिखा हुआ है मैसेज में, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ. बहुत शुक्रिया आपका. नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम. जी अदा, दोस्तों के नाम बताइए.
1: अदा कुर्बान खास के लिए खालिक लाशेरी, अदा अजीज जरवार, पंजो यार मोहम्मद सुनगी जेके बुदन प्यादी में.
0: ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका भी. और जनाब जी मीरपुर खास FM 88 नेटवर्क से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सब दोस्त हमारे. और आज आप पे हमने जो है ना बोझ नहीं डाला है टॉपिक का. डेली हम एक टॉपिक लेकर आते हैं, आज आपको टॉपिक से आज़ाद किया है. अब दोस्तों को याद कर लें आप. नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, वेलकम कहते हैं आपको. क्या हाल है आपके.
2: अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ. आप सुनाया कैसी हैं.
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. यास्मीन, क्या कहेंगी सब सुनने वालों को, क्या पैगाम देना चाहेंगी.
2: सबसे पहले तो आपी ने आज जो आपने किस्सा सुनाया ना, माशाल्लाह इतना बहुत ही प्यारा, बस लफ्ज़ इतना प्यारा आपने किस्सा सुनाया.
0: ये ऐसी हमारे इर्द गिर्द बहुत सी स्टोरीज बिखरी हुई है, तो उनमें से ये एक चीज मैंने सेलेक्ट की थी कि जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं.
2: मतलब सुनते सुनते आंखों में आंसू आई है.
0: जब बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की मेहनत को भुला देते हैं, जो वो एफर्ट करते हैं, खुद भूखा रह के अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ये चीजें भूल जाते हैं बच्चे.
2: बिल्कुल इसी तरह.
0: क्या कहेंगी यास्मीन सब सुनने वाले.
2: मेरी तरफ से उम्मीद अली त्रागी भाई को और सब सुनने वालों को सलाम. आपका परवीन का एक कहना कलाम है, माए लीले की लुआ का, ये सुनाइएगा.
0: چلیں کوشش کرتے ہیں, اگر ملے گا تو پلے کر دیں گے. بہت شکریہ
2: اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کچھ.
0: تھینک یو یاسمین, سیم ٹو یو. اور جناب

0: इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी स्टोरीज बिखरी हुई हैं और मैं एक चीज और आज अपने प्रोग्राम में आप सबसे कहूंगी, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: रुस्तम अली कुमार बात कर रहा हूँ, सुनो खान से।
0: भलीकार कहते हैं अदा आपको, क्या हाल है आपके? चले जी, इन्होंने तारीफ ही करनी होगी प्रोग्राम की, क्योंकि इनके जब जब टेक्स्ट आते हैं ना तो ये तारीफ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया अदा, वेलकम कहेंगे आपको भी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: वेलकम कहेंगे। अलीजा बात कर रही है?
2: जी जी अलीजा बात कर रही
0: हूं। कैसी हो अलीजा, आप ठीक हो?
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या कहेंगी अलीजा आप सब सुनने वालों को, कोई मैसेज देना चाहेंगी?
2: कोई मैसेज नहीं, क्योंकि आपके लिसनर एक काम से सुनते हैं और दूसरे काम से निकाल देते हैं।
0: नहीं नहीं, कुछ कुछ अमल भी करते हैं। नहीं, ढेरों लिसनर्स में से कुछ लिसनर्स अमल करते हैं।
2: हाँ जी, और अक्सा को सलाम, वो आ नहीं रही है जी हमें।
0: अक्सर शायद जब कभी वो आउट सिटी गई हुई होती है, मैं 2008-09 से मुझे सुन रही है, ये मुझे पता है कि जब भी आउट सिटी जाती हैं तो ऐसे ही गायब होती हैं, शायद कहीं गई हुई हो सकता है।
2: समरीन को सलाम।
0: चले
2: समरीन,
0: यास्मीन
2: नाम एक जैसा है ना, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ।
0: सही, चले जी, समरीन, यास्मीन, अक्सर सबको सलाम, बल्कि तमाम सुनने वालों को इन समेत सबको सलाम। और निदा ठीक है?
2: हाँ जी निदा ठीक है, अभी मेरे पास है।
0: चलो अच्छी बात है, आप दोनों प्रोग्राम सुने और मम्मी को बहुत सारा थैंक्स कहिएगा, आप कहीं याद रखिएगा, थैंक यू।
2: और सॉन्ग सुनाइएगा।
0: कौन से सिंगर का?
2: इश्क मुर्शिद अवस्थी।
0: चलें, आई विल ट्राई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
2: ओके, या फिर खामोशी के
0: चाह रही हूँ अपने लिसनर से, हमेशा सोचती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, मुझे जब मेरा प्रोग्राम खत्म होता है या ऐसे ही कभी फ्री टाइम होता है तो वो बात याद आ जाती है। पहली तो ये कि गर्मी का मौसम है, किसी सायादार दरख्त पे आप जो है दाना और पानी रख दिया करें। अब बहुत घरों में मैंने एक चीज नोट की है, बहुत अफसोस के साथ कहूंगी ये बात, कि कभी ऐसा होता है कि रात में जो है रोटियां बच जाती हैं तो आप लोग उठा के घर से बाहर फेंक देते हैं, ये बेहद गलत हरकत है, बे इंतहा गलत है। इस रिस्क के लिए इंसान बहुत तगोदो करता है, बहुत जतन करता है। आपने थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि उन्हीं रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके ये छत पे रख दिया करें। कौवा जो है ना, कौवा वो बारीक जो बाजरे के जो छोटे छोटे बारीक दाने होते हैं ना, वो नहीं खा सकता, तो वो ये रोटी जो है ये उसके रिस्क का सबब बन जाएगी। आप शॉपर में डाल के गली में फेंक देते हैं, ये बड़ी ही अजीबोगरीब हरकत है, पहली बात तो ये। दूसरा, अपने बच्चों की जो सेफ्टी आप लोग करेंगे वो कोई और नहीं करेगा। बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूल से, बच्चे घर पे होते हैं और माएं घरों के कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ होती हैं, गर्मी का मौसम होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, बच्चों को घर से बाहर खेलने भेज देती हैं, माहौल नहीं है, बच्चों को ऐसे बिल्कुल बाहर छोड़ दिया जाए। महल्ले के आस पड़ोस के जितने भी लोग रहने वाले हैं, बच्चों को उनसे फ्रेंक होने नहीं देना है आपने। आपके बच्चों से जो प्यार, उनकी केयर जो आप करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए आपने एहतियात करनी है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अड़ोस पड़ोस में कहीं जाते हैं, माएं उन्हें कुछ दे देती हैं, जाओ ये पड़ोस में दे आओ, आज हमने बिरयानी बनाई है, जाओ फलां के घर दे आओ, तो बच्चों को अकेले नहीं भेजा करें। छुट्टियों के दिन बहुत से फैमिली जो है घरों से बाहर गई हुई होती है, मर्द हज़रात घरों में अकेले होते हैं, बच्चे अकेले होते हैं, तो ऐसे मौकों पर नाखुशगवार वाकयात पेश आ सकते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भी अगर आप भेजते हैं तो वालदेन की जिम्मेदारी है, खुद छोड़ के आए, लेके आए, रिक्शों में भी नहीं ऐसे ही आप अकेले बच्चों को भेज दिया करें। बहुत जगह पे मैंने ड्यूरिंग ट्रेवल एक चीज नोट की है, गर्ल्स को रिक्शे वाले ने अपने बराबर में बिठाया हुआ होता है, रिक्शे की सीट पे पीछे वाली सीट खाली होती है, बहुत गलत है ये चीज। आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाहर वालों को क्या पड़ी है जो आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे। माले मुफ्त दिल बेरहम वाली मिसाल यहाँ मैं कह सकती हूँ, तो बहुत एहतियात करें, एहतियात बेहतर होती है पछतावे से। उस्ताद अहमद बख्श वीसर विलेज दिंगल वीसर शहर जाए क्या लिखा है, आज तो आपने स्टोरी बताई वो बेहतरीन थी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब यहाँ पर हम न्यूज़ और कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं और इन तमाम ब्रेक से लौट के आते हैं। पेरेंट्स जो है ना, उनके मामले में जो हमारे रवैये होते हैं, उन्होंने उस चीज ने मुझे मजबूर किया आज ये हकीकी कहानी आपको सुनाई जाए।
3: It's 4 p.m. This line check is brought to you by Fakiri Dex Ointment.
4: Tez Aaram, Muasir Hifazat.

0: वञी करे मुंहिंजे माण्हुनि खे लॻी आहे की मूंखे पैगाम ॾिनो वियो आहे त तव्हां जेका अपील में वञो था उहा अपील जेको आहे तव्हां हुन तां हथु खणो. तव्हां ॾिसो त कंहिंजी अबेटमेंट थिए थो ॿियो, कंहिंजा कमदारनि, कंहिंजा किराए जा कातिलनि जी माण्हू आहिनि. तव्हांखे ख़बर आहे असांजे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जी अबेटमेंट वरी भगवान चंद ऑन स्पॉट कयो. उन्हनि पूरो जेको हीउ फ़ैसिलो आहे उहो पहिरीं ॿुधायो त हुननि पंहिंजे ज़िद में हिकिड़े क़िस्म जो हीउ फ़ैसिलो वरितो ऐं सभिनीनि खे आज़ादु करायो. अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ादु करे ऐं हथियार खणी करे असांखे ॿुधाईंदा पिया त तव्हां कुझु बि था करे सघो.
1: सरदार चांडू जे कमदारनि सोटनि रियाज चांडू खे क़तल कयो. टे क़तल केस जी अपील करण ते चोथो माण्हू क़तल कयो वियो. मिरबाब चांडू ते मुर्ज़ा चांडू, सिकंदर चांडू ऐं ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज खे क़तल कयो. जवाबदार समझनि था त टे क़तल केस मां परी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे. वाकिए जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो समझ में नथो अचे. इंसाफ़ लाइ जंग विढ़ूं पिया. जान खे ख़तरो आहे. इल्ज़ाम हेठां मुर्ज़ा चांडू पाण खे बेगुनाह करार ॾींदे इल्ज़ाम कूड़ो करार ॾेई छॾियो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अदालत हेठि कोयटा में सूबाई अपेक्स कमेटीअ जो इजलास. फील्ड मार्शल रासिम उरी बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर समेत सिविल ऐं अक्सरी क़यादत जी शिरकत. वज़ीर आज़म जो दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते आगाही ॾिनी वई. भारत सिंध ताज माहिदो फौरी तौर ते बहाल करे पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे. नायब वज़ीर आज़म इसाकदार ऐं क्रोएशियन परडेही वज़ीर जी गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस. ईरान इसराइल चिकताण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो. पाकिस्तान क्रोएशिया में बदतरफ़ी वापार जी आजा कयूं था. क्रोएशियन परडेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतराम एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि. ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौक़ा ॻोल्हण ते इतफ़ाक़ कयो. टेक्नोलॉजी ख़िदमतनि, सिहत ऐं सियासत में सहकार जा इम्कान मौजूदु आहिनि. हिकु तरफ़ सुप्रीम लीडर जो शहीद आयतुल्ला खमेनेई जो आख़िरी रस्मूं जारी आहिनि त ॿिए तरफ़ ईरान ते अमरीकी हमला. हमलनि में 14 ईरानी शहीद. गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिज़ाइल फायर कया विया. मशरक़ तरफ़ वेंदड़ ॿिनि पुलनि ते हमला. अमरीका सेंट्रल कमांड चयो आहे त फिज़ाई हमिलो मरेलो कयो वियो. ईरानी खे दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल ऐं ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया. बंदर अब्बास, कसम, सिरक, कोनार्क ऐं चंबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणनि रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो. ईरान जो अमरीका खे भरपूर जवाब. खिते में अमरीकी फ़ौजियुनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला. पासदार इंकलाब जो चवणु आहे त कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकियुनि खे निशानो बणायो वियो. कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप रफजान ऐं अल इस्लाम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो. बहरीन में अल जफ़ीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते हमला कया विया. कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिज़ाइल ड्रोन किरण जी दावा. ईरान ते हमला. आबना हुरमस में सामूंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रदअमल आहे. ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी त नतीजा वधीक सख़्त हूंदा. अमरीकी सदर ट्रंप चयो त खेसि नथो लॻे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे. ईरान सां जंग बदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे. ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: उसने मुझे बताना है वो कौन सी चीज है जो खुद नहीं देख सकती मगर रास्ता दिखाती है. वो कौन सी चीज है जो खुद नहीं देख सकती मगर रास्ता दिखाती है. अगर मालूम है सवाल का जवाब तो आप डायल कर सकते हैं 03136615688. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी. अदा सवाल का जवाब ठीक है. गलत जवाब है. अब आप सुन लें बैठ के प्रोग्राम ताकि आपको जवाब का इल्म हो. ओके वो कौन सी चीज है जो खुद नहीं देख सकती मगर रास्ता दिखाती है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम जी. बहन गुलाम रसूल मरी मीरपुर काठड़ी
0: जी. अदा फरमाइए.
1: सड़क या रास्ता.
0: आपका जवाब भी गलत है. अब आप भी बैठ जाइए खामोशी से और प्रोग्राम सुनिए ताकि आपको सही जवाब का इल्म हो सके. नेक्स्ट कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. यास्मीन. यास्मीन आपको मालूम है सवाल का जवाब जी. हाँ जी यही आंसर है. बहुत शुक्रिया यास्मीन. लाठी ये राइट आंसर था. ओके और हमारी मैंने कहा ना पाकिस्तानी कौम हद से ज्यादा जज्बाती इमोशनल कौम है. अगर सवाल नहीं सुनते आप लोग फौरन फौरन जवाब देने की जल्दी होती है. तवज्जो से अगर सवाल सुनेंगे ना तो आसानी से जवाब दे सकेंगे और फिर जज्बात में आके फिल फॉर आपने इसके लिए कि भाई ये बहुत कॉल्स करते हैं हर प्रोग्राम में ये लिसनर होता है सिर्फ नाम के लिए आप लोग फटाफट कॉलें करते हैं फिर गलत जवाब बता देते हैं. बेइज्जती नहीं होती है ऐसी फील होता है ना इंसल्ट. अच्छा मुझे अजीब सा लगता है मेरे रेगुलर लिसनर हैं गौर से सुनते हैं हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं लेकिन सवाल का जवाब देते वक्त जो कैफियत आप लोगों की होती है मुझे दुख होता है. मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स के आंसर भी बिल्कुल राइट हों. तो पहले तवज्जो से सुन लिया करें. आरजे कोई भी मेल हो फीमेल हो बोल रहा हो उसकी बात को समझा करें फिर पार्टिसिपेट किया करें फिर प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होता है. प्रोग्राम हम 10% अच्छा करते हैं 99% लिसनर्स के हाथ में होता है. तो कोशिश किया करें अपने वजूद से माशरे में अच्छी वाइब्स जो है माशरे को दें. एनीवे जनाब बातों के सिलसिले को ब्रेक देना है यहाँ छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे.

0: हर दिन हर पहर इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक. गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है. सुनते रहो GFM 94.

भी नहीं। चाहते दोनों बहुत एक दूसरे को है, मगर ये हकीकत मानता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। जुर्म की नौयतों में कुछ तकाफत हो तो हो, दर हकीकत पारसा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। रात भी वीरां फसीले, शहर भी टूटी हुई, और सितम ये जागता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। जाने आरिफ तू भी जिद्दी था, अना मुझ में भी थी, दोनों खुदसर थे झुका तू भी नहीं, मैं भी नहीं। लर्जिशों से मावरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। दोनों इंसान है खुदा।

अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गुलाबी? आई एम आयशा फ्रॉम मीरपुर खास। वालेकुम अस्सलाम आयशा, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इस कहानी को सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और इस कहानी में एक पैगाम है कि अपने पेरेंट्स का एहतराम करें। बिल्कुल यही पैगाम है अस्मा, और इसीलिए जो है मैंने जो है ये कहानी आपको सुनाई लाइट, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सेम टू यू अस्मा, थैंक यू।

टेक्स्ट मिसिंग में आया, जस्ट ये मैसेज आया, सुंदर आवाज कानों तक गूंजती है और बहुत शुक्रिया सारी बाजोक समातों तक का, आपने कहा सदा सलामत रहे। ओके, और ये जो तशबीहात आपने भेजी है बहुत ही जबरदस्त है। इंतजार उसका किया जाता है अस्मा, जिसने आना होता है। ठीक है, कोशिश करती हूँ कल के प्रोग्राम के लिए, लेकिन 50-50 है फिलहाल। हम यूसुफ़े ज़मां थे, अभी कल की बात है, हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है, वो दिन भी थे कि हम ही तुम्हारी ज़बां पे थे, मौजूए दास्तां थे अभी कल की बात है, ए कारवाने इनकलाब गुल तुमको याद हो, हम मीरे कारवां थे अभी कल की बात है, जिन दोस्तों की कमी आज हयात में, वो अपने दरमियां थे अभी कल की बात है, कुछ हादसों से घिर गया हूँ मोहसिन जमीन पर, हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है, हम यूसुफ़े ज़मां थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है।

0: सुनेंगे जीए एफएम।
1: मालूम की तव्हांखे ख़बर आहे असांजे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जो भगवान चंद उन छो कयो। हुननि पूरो जेको हीउ फ़ैसिलो आहे उहो पहिरीं ॿुधायो त हुननि पंहिंजे ज़िद में हिकिड़े क़िस्म जो हीउ फ़ैसिलो वरितो ऐं सभिनीनि खे आज़ादु करायो। अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ादु करे ऐं उहे साॻिया ई माण्हू हथियार खणी करे असांखे ॿुधाईंदा पिया त तव्हां कुझु बि था करे सघो।
2: चाणियूं जे कमदारनि सोटनि रियाज़ चाणियो खे क़तल कयो। टे क़तल केस जी अपील करण ते चोथो माण्हू क़तल कयो वियो। मिरबाब चाणियो ते मुर्ज़ा चाणियो सिकंदर चाणियो ऐं ज़मीन ते कम कंदड़ सोट रियाज़ खे क़तल कयो। जवाबदार समझनि था त टे क़तल केस मां परी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे। वाकिए जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो समझ में नथो अचे। इंसाफ़ लाइ जंग विढ़ूं पिया। जान खे ख़तरो आहे। इल्ज़ाम हेठां मुर्ज़ा चाणियो पाण खे बेगुनाह करार ॾींदे इल्ज़ाम कूड़ो करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ अदालत हेठि कोयटा में सूबाई अपेक्स कमेटीअ जो इजलास। फील्ड मार्शल सलासम उली बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर समेत सिविल ऐं अक्सरी क़यादत जी शिरकत। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते आगाही ॾिनी वई। भारत सिन ताज वाइदो फौरी तौर ते बहाल करे पाणी खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म इज़ाकार ऐं क्रोएशियन परडे॒ही वज़ीर गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान इसराइल चिकटाण कटाइण लाइ पाकिस्तान खे उतार था कयो। पाकिस्तान क्रोएशिया में बदतरफ़ी वापार जी आजा कयूं था। क्रोएशियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतिराम एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौक़ा ॻोल्हण ते इतफ़ाक़ कयो। टेक्नोलॉजी ख़िदमतनि सिहत ऐं सियासत में सहकार जा इम्कान मौजूद आहिनि। हिकु तरफ़ सुप्रीम लीडर जो शहीद आयतुल्ला खमेनी जो आगी रस्मूं जारी आहिनि त ॿिए तरफ़ ईरान ते अमरीकी हमला। हमलनि में 14 ईरानी शहीद। गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिज़ाइल फायर कया विया। मशहद तरफ़ वेंदड़ ॿिनि पुलनि ते हमला। अमरीका सेंट्रल कमांड चयो आहे त फिज़ाई हमिलो मरेलो कयो वियो। ईरानी दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास कसम सिरक कोनार्क ऐं चंबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणनि रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो। ईरान जो अमरीका खे भरपूर जवाब। खिते में अमरीकी फ़ौजियुनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। पासदारनि इंक़लाब जो चवणु आहे त कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप रफ़जान ऐं अल इस्लाम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में अल जफ़ीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते हमला कया विया। कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिज़ाइल ड्रोन किरण जी दावा। ईरान ते हमला आबन हुरमस में सामूंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रदेअमल आहे। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी त नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमरीकी सदर ट्रंप चयो त खेसि नथो लॻे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंग बदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे। अमरीका खे वाइदनि जी भञकड़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। आपणे हुरमज़ अमरीकी धमकियुनि सां पर न ईरानी इंतज़ाम तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ चयो आहे त अमरीकी धमकियुनि खे नथा ॾिजूं। आपणे हुरमज़ ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़ुदमुख़्तारी तहत खोलियो वेंदो। नेब तालीम खाते जो 1999 खां जून 2020 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकॉर्ड तलब करे वरितो। नेब पारां भर्ती थियल समूरनि तदर्सी ऐं गैर तदर्सी मुलाज़िमनि जो तालीमी क़ाबिले जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में हिदायत कई वई आहे त हफ़्ते अंदरि रिकॉर्ड उमाणियो वञे। रिटायर्ड मुलाज़िमनि जो बि समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो आहे। घड़ी खेरो जे शाखनि में पाणीकोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि चवणा ते बेगारी किनार मां निकिरंदड़ ताज़ा शाख किजन शाख लुंड माइनर ऐं सेरवा में पाणी घटि आहे। जेको पाणी आहे आपाशी मलदार पैसनि वटि रिको करे रहिया आहिनि। नोटिस वठी शाखनि में पाणी फराहम करे नुक़सान खां बचायो वञे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: शाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डर जगह जा पावा पाइप डेढ़ चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00003
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372 0242-46-0100

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: असां जे बेसिकली हिकिड़ो पैगाम ॾिनो आहे, हीउ गोली शायदि मुंहिंजे लाइ हली आहे जेका वञी करे मुंहिंजे के माण्हू खे लॻी आहे। हे मूंखे पैगाम ॾिनो आहे त तव्हां जेका अपील में वञो था उहा अपील जेको आहे तव्हां वटां हथु खणो। तव्हां ॾिसो त कंहिंजी अबेटमेंट ते थिए थो पियो, कंहिंजा कमदारनि, कंहिंजा किराए जा कातिलनि जी माण्हू, तव्हांखे ख़बर आहे असांजे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जी अबेटमेंट रही, भगवान चंद ऑन द स्पॉट कयो। उन्हनि पूरो जेको ही फ़ैसिलो आहे उहो पहिरीं ॿुधायो त हुननि पंहिंजे ज़िद में हिकिड़े क़िस्म जो हीउ फ़ैसिलो वरितो ऐं सभिनीनि खे आज़ादु करायो। अॼु उहो ई नतीजा पिया था मिलनि त हुननि सभिनीनि खे आज़ादु करे ऐं उन साॻिया ई माण्हू हथियार खणी करे असांखे ॿुधाईंदा पिया त तव्हां कुझु बि था करे सघो।
1: सरदार चांडू जे कमदारनि सोटनि रियाज़ चांडू खे क़तल कयो, टे क़तल केस जी अपील करण ते चोथो माण्हू क़तल कयो वियो। मिरबाब चांडू ते मुर्ज़ा चांडू, सिकंदर चांडू ॿिनि ज़मीन ते कमु कंदड़ सोट रियाज़ खे क़तल कयो। जवाबदार सम्झनि था त टे क़तल केस मां परी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे, वाकिए जो ज़िमेवार आख़िर केरु आहे? पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो समझ में नथो अचे। इंसाफ़ लाइ जंग विढ़ूं पिया, जान खे ख़तरो आहे। इल्ज़ाम हेठां मुर्ज़ा चांडू पाण खे बेगुनाह करार ॾींदे इल्ज़ाम कूड़ो करार ॾेई छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी तरफ़ हेठि कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटीअ जो इजलास, फील्ड मार्शल रासम उली बलोचिस्तान जे वरी वज़ीर समेत सिविल ऐं अक्सरी क़यादत जी शिरकत। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऑपरेशन ते आगाही ॾिनी वई। भारत सिंध ताज़ माहिदो फौरी तौर ते बहाल करे पाणी खे हथियार तौरु इस्तेमाल करणु आलमी कानून जी भञ कड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं क्रोशियन परडे॒ही वज़ीर जे गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान इसराइल छिकताण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो। पाकिस्तान क्रोशिया में बदतरफ़ी वापार जी आजा कयूं था। क्रोशियन परडे॒ही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतराम एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौक़ा ॻोल्हण ते इतफ़ाक़ कयो। टेक्नोलॉजी, ख़िदमतनि, सिहत ऐं सियासत में सहकार जा इम्कान मौजूदु आहिनि। हिकु तरफ़ सुप्रीम लीडर जे शहीद आयतुल्ला खमेनेई जो आगाही रस्मूं जारी आहिनि त ॿिए तरफ़ ईरान ते अमरीकी हमला, हमलनि में 14 ईरानी शहीद। गुलिस्तान सूबे जे अकला शहर में रेलवे पुल ते 7 मिज़ाइल फायर कया विया। मशहद तरफ़ वेंदड़ ॿिनि पुलनि ते हमला, अमरीका सेंट्रल कमांड चयो आहे त फिज़ाई हमिलो मरियलो पए वियो। ईरानी खे दिफ़ाई निज़ाम मिज़ाइल ड्रोन ज़खीरनि ते हमला कया विया। बंदर अब्बास, कसम, सिरक, कोनार्क ऐं चंबार में स्ट्रेटेजिक ठिकाणनि रेलवे पुलनि समेत 90 हंधनि ते निशानो बणायो वियो। ईरान जो अमरीका खे भरपूर जवाब, खिते में अमरीकी फ़ौजियुनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला। पासदारनि इंक़लाब जो चवणु आहे त कुवैत ऐं बहरीन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप रफ़जान ऐं अल इस्लाम एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में अल जफ़ीर ऐं शेख ईसा एयरबेस ते हमला कया विया। कुवैत ऐं बहरीन पारां ईरानी मिज़ाइल ड्रोन किरण जी दावा। ईरान ते हमला आबनै हुरमस में सामूंडी जहाज़नि ते थियल हमलनि जो रदे अमल आहे। ॿीहर अहिड़ी कार्रवाई थी त नतीजा वधीक सख़्त हूंदा। अमरीकी सदर ट्रंप चयो त खेसि नथो लॻे त ईरान में अमरीका सां विढ़ण जी का ताक़त बची आहे। ईरान सां जंगबंदी मुआदो ख़तम थी वियो आहे। ॿिन्ही मुल्कनि में वॾे पैमाने ते जंग शुरू थियण जो इम्कान नाहे। अमरीका खे वाइदनि जी भंजकड़ी ऐं धमकियुनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। आबनै हुरमस अमरीकी धमकियुनि सां पर न ईरानी इंतज़ाम तहत खोलियो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाग़िर कालिबाद चयो आहे त अमरीकी धमकियुनि खे नथा ॾिजूं। आबनै हुरमस ईरानी इंतज़ाम ऐं ख़िदमतकारी तहत खोलियो वेंदो। नेब तालीम खाते जो 1999 खां जून 2020 ताईं जे मुलाज़िमनि जो रिकार्ड तलब करे वरितो। नेब पारां भर्ती थियल समूरनि तदर्सी ऐं गैर तदर्सी मुलाज़िमनि जो तालीमी क़ाबिलियत जो रिकार्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरनि लाॻापियल इदारनि ऐं ज़िले तालीमी आफ़िसरनि खे ख़त लिखी छॾियो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेहरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
6: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि
6: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
7: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100

घोट भरसा नारेजा बिरादरी की बिन धुरियन में सगावती तकरार था जेड़ो फायरिंग में सस नूह समेत पंज जणा कतल एक बाड़ी समेत ब जणा जख्मी घोट सार नारेजो में नारेजा बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़े दौरान एक धुरजो फतेह मोहम्मद संदस पुट राजा नारेजो मारजी व्या फायरिंग में भी धुरजो सैराब नारेजो ब औरतू जीजा संदस नूह राबिया नारेजो मारजी व्यू फायरिंग में बारडे अली रजा नारेजो समेत ब जणा जख्मी थी पिया पंजन जणन जे कतलपात इलाके में सख्त चिकटाण वारी सूरतहाल पुलिस नफरी वाके वारे हंध पहुतल सूरतहाल ते जाब्ते लाइ मुख़्तलिफ़ थाणनि तां इज़ाफ़ी नफरी भी तलब कई वई।

0: असांखे बेसिकली खां पैगाम ॾिनो आहे, हीउ गोली शायदि मुंहिंजे लाइ हली आहे जेका वञी करे मुंहिंजे के माण्हू खे लॻी आहे। हे मूंखे पैगाम ॾिनो वियो आहे त तव्हां जेका अपील में वञो था उहा अपील जेको आहे तव्हां हुन तां हथु खणो। तव्हां ॾिसो त कंहिंजी अबेटमेंट थिए थो पियो, कंहिंजा कमदार आहिनि, कंहिंजा किराए जा कातिल आहिनि जी माण्हू आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे असांजे ट्रिपल मर्डर केस में सरदार चंद जी अबेटमेंट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 03201800003।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मैं भी दूर जो सोराब नारे जो बोटू जीजा ऐ संदस नू राबिया नारे जो मारजी वयो फायरिंग में बाड़े अली रजा नारे जो समेत बजणा जख्मी थी पिया पंजन जणन जे कतल बाद इलाके में सख्त चिकताण वारी सूरत हाल पुलिस नफरी वाके वारे हद पहुतल सूरत हाल ते जाब्ते लाए मुख्तलिफ थाणनि तां इज़ाफ़ी नफ़री बि तलब कई वई।

असांजो परिवारो पाड़ेसरी दहशतगर्दी जी कार्रवाई में मुलविस आहे। दहशतगर्द तंजीमन के हथियार फराम कया पिया वञनि। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल थी रही आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलोचिस्तान के गवर्नर ए वडे वज़ीर समेत बेन अख्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरतहाल ए दहशतगर्दी खिलाफ जारी ऑपरेशन से ब्रीफिंग दिनी वही। इजलास के खिताब कर शहबाज़ शरीफ तो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे ताई दहशतगर्दी खिलाफ जंग जारी रही। पाकिस्तान के हथियारबंद फौज के ऑफिसरन जवानन मुल्क के दिफा लाए लाजवाल कुर्बानी दिनों आन। सियासी ए अस्करी क्यादत जो इो अजम है असा के मुल्क में दहशतगर्दी को खात्मो करणो है। दहशतगर्दी के फितने के मुकम्मल खात्मे लाए समूरा वसीला कुतुब आंदा वेंदा। भारत सिंतास मुआदो फौरी तौर बहाल कर पानी के हथियार तौर इस्तेमाल कर आलमी कानून की बजकड़ी है। नायब वज़ीर आज़म सागर ए क्रोशियन परडेही वजीर की गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान इसराइल चिकटान घटाने लाए पाकिस्तान किरदार अदा कर। पाकिस्तान ए क्रोशिया में बेतरफी व्यापार की आजियां क्यों था। क्रोशियन परडेही वजीर बिन्हीं मुल्क लागापा घरियल एतराम एतवाद की बुनियाद से बदल आन। बिन्हीं मुल्क सहकार जहा नवा मौकिया गोलन इतफाक कर टेक्नोलॉजी खिदमतन सेहत ए सियासत में सहकार जहा इम्कान मौजूद आन। एक तरफ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनाई जो आखिरी रस्मों वे पासे ईरान से अमरीकी हमला। 14 ईरानी शहीद। ईरान के गुलिस्तान सूबे के अकला शहर में रेलवे पुल से 70 मिसाइल फायर किया वह। बशर तरफ ईंदड़ बिन पुलन से हमला। अमरीकी सेंटकॉम का चवण है गुजर रात ईरानी दिफाई निजाम मिसाइल ए ड्रोन जखीरन से हमला किया वह। बंदर अब्बास कसम सरीक कोनार्क ए चाबहार में स्ट्रेटेजिक थाकन में रेलवे पुलन समेत 90 हंधन से निशानो बनाए वो। ईरान जो जवाबी वार खत्े में अमरीकी फौजी अड्डन से मिसाइल ए ड्रोन हमला। पासर इनकलाब मूजिब कुवैत ए बहरेन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाए वो। कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप एयरबेस के निशानो बनाया। बहरेन में अल जफीर ए शेख ईसा एयरबेस से हमला। कुवैत ए बहरेन पारा ईरानी मिसाइल ए ड्रोन्स तबाह कर दावा। ईरान से हमला। अबनाए हुर्मुस में सामुंडी जहाजन से थियल हमलन जो रद्देमल बीहर अड़ी कार्रवाई थी तो नतीजा वधिक सख्त हुंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खेस नथो लगे ईरान वट विढ़ण की का ताकत बची है। जंगबंदी मुआदो खत्म थियण बावजूद बिन्हीं मुल्क में वे पैमाने से जंग शुरू थियण जो इम्कान ना है। अमरीका के वायदन की भजकड़ी ए धमकियन की कीमत अदा करनी पवंदी। अपना हुर्मुस अमरीकी धमकियन से भी ईरानी इंसामत तहत खोलो वेंदो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिपाफ है त अमरीकी धमकियन का नथा डिजूं। अपना हुर्मुस ईरानी इंसाम ए खुदमुख्तारी तहत खोलो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खसूसी रियायत होंगी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमे मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320-18-003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
6: खुशखबरी हानी अवाजे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधिक राबते जे लाए 0300-383-569

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दी में ओभर वारो पाड़ेसरी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल थी रही आहे। सभी गडजी फितने के खत्म कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क्वेटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बलोचिस्तान के गवर्नर ए वे वजीर समेत बेन इख्तियारन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरतहाल ए दहशतगर्दी खिलाफ जारी ऑपरेशन से ब्रीफिंग डिनी वही। इजलास के खिताब कदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ बलोचिस्तान में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे ताई दहशतगर्दी खिलाफ जंग जारी रही। पाकिस्तान के हथियारबंद फौज के ऑफिसरन जवानन मुल्क के दिफा लाए लाजवाल कुर्बानियों दिनों हैं। सियासी अस्करी क्यादत जो यो अजम है असांके मुल्क मां दहशतगर्दी जो खात्मो करणो आहे। दहशतगर्दी के फितने के मुकम्मल खात्मे लाए समूरा वसीला कुतुब आंदा वेंदा। भारत सिंतास माहिदो फौरी तौर बहाल करे। पानी के हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून की भजकड़ी है। नायब वजीर आजम इसाक डार की क्रोशियन परडेही वजीर से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसाक डार इसराइल ईरान इसराइल चिकतान घटाने लाए पाकिस्तान किरदार अदा कयो। क्रोशिया से बेतरफी व्यापार की आजिया क्यों था। क्रोशियन परडेही वजीर बिन्हीं मुल्क जहा लगापा गडियल एतराम एतमाद की बुनियाद से बधल हैं। बिन्ही मुल्क सहकार जा नवा मौका गोलन ते भी इतफाक कयो आहे। अमेरिका जंगबंदी के खात्मे वारे ऐलान का पोई ईरान वथा हमला तेज कर छ्या। मिसाइल हमलन में 14 ईरानी शहीद थियण की तस्दीक। ईरान के गुलिस्तान सूबे के अकला शहर में रेलवे पुल से 7 मिसाइल फायर किया गया। मशहद तरफ ईंदड़ बिन पुलन ते भी हमला। अमरीकी सेंटकॉम जो चवण है तो ईरानी दिफाई निजाम मिसाइल ए ड्रोन जखीरन से हमला किया गया है। बंदर अब्बास कसम सरीक कोनार्क ए चाबहार में स्ट्रेटेजिक ताकन ए रेलवे पुलन समेत 90 हंधन से निशानो बनाए गयो। ईरान जो जवाबी वार खिते में अमरीकी फौजी अड्डन से मिसाइल ए ड्रोन हमला। पासदार इनकलाब मूजिब कुवैत बहरेन में अमरीकी अड्डन के निशानो बनाए वो। कुवैत में अमरीकी फौजी कैंप एयरबेस के निशानो बनाए। बहरेन में अल जफीर ए शेख ईसा एयरबेस से हमला। कुवैत ए बहरेन पारा ईरानी मिसाइल्स ए ड्रोन तबाह कर दी दावा। ईरान से हमला अपनाए हुर्मुज में सामुंडी जहाजन से थियल हमलन जो रद्द अमल है। बीहर अड़ी कार्रवाई थी तो नतीजा सख्त हुंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है खेस नथो लगे ईरान वट विढ़ण की का ताकत बची है। जंगबंदी मुआहिदो खत्म थियण बावजूद बिन्ही मुल्क में वे पैमाने से जंग शुरू थियण जो इम्कान न है। अमरीका के वायदन की बदकड़ी ए धमकियन की कीमत अदा करनी पवंदी। अब्दुल अमरीकी धमकियन से भी ईरानी इंतजामन तहत खोलो वो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर पाकर कालिबाफ है अमरीकी धमकियन का नथा डिजू। अब्दुल अरमूस ईरानी इंतजाम खुदमुख्तारी तहत खोलो वो।

0: बीजो गोट भरसा नरेजा बिरादरी की पिंथुरियन में सगावती तकरार था जड़ो फायरिंग में सस नू समेत पंज जना कतल एक भाड़े समेत बजना जख्मी गोट साक नारेजो में नरेजा बिरादरी की पिंथुरियन में जेड़े दौरान एक दुर्जो फतेह मोहम्मद ए संदस पुट राजा नारेजो मारजी व्या फायरिंग में बी दुर्जो सोराब नारेजो औरतू जीजा ए संदस नू राबिया नारेजो मारजी व्यू फायरिंग में भाड़े अली रजा नारेजो समेत ब जना जख्मी थी पाया पंजन जणन के कतल बाद इलाके में सख्त चिकताण वारी सूरत हाल पुलिस नफरी वारे हंध पोतल सूरत हाल से जब्त लाए मुख्तलिफ थाणन तां इजाफी नफरी भी तलब कई वही।
1: सुबह हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों कातलों दरिंदों मुर्तजा चांडे सिकंदर चांडे तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर केस के मशीन रियाज चांडे मेरे कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर सवाल करती हूँ सबका जिम्मेदार कौन है। मैं आईजी साहब से अपील करती हूँ, मैं हायर अथॉरिटीज से अपील करती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करती हूँ कि हम कानून और आइन के आश्रय एक जंग लड़ रहे हैं और पहले भी हमने अपने तीन प्यारों के जनाजे उठाए, आज मेरे नौजवान कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इस सबका जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस का इसमें मनफी रवैया, सिंध पुलिस का इसमें कमदारी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आईजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इस पे नजरसानी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को रोका जाए। हमारी जानों को खतरा है, हमारे गाँव में आज फायरिंग करके हमारे नौजवान कजन को कत्ल कर दिया गया।
0: मेहड़ भरसा चांडे बिरादरी की पिंथुरियन में जड़े दौरान उमर रुबाब चांडियो जो नौजवान सोट कतल टीएनए कतल केस मां बरी थियल जवाबदार मुर्सा चांडियो समेत 12 जवाबदार खिलाफ केस दाखिल। उमर रुबाब चांडियो टीएनए कतल केस की अपील करने ते चौथो मानू कतल कियो वियो। मुर्तजा चांडियो सिकंदर चांडियो ए बेन जमीन ते कम कंदड़ सोट रियाज के कतल कयो आहे। जवाबदार समझन था त टीएनए कतल केस मां बरी थियण बाद कानून खेन कुछ नथो करे सके, बाकी जो जिम्मेवार आखिर केर आहे। पुलिस जो कमदारी वारो रवैयो भी समझ में नथो अचे, जान के भी खतरो आहे। कतल थियल रियाज चांडियो जी भाव एहसान चांडियो जी फरियाद ते मुर्तजा चांडियो अब्दुल सत्तार चांडियो सिकंदर ज़ुल्फ़िकार चांडियो समेत 12 जवाबदारन खिलाफ केस दाखिल। पुलिस बिन जवाबदारन मोहम्मद परेल ए सफर चांडियो समेत 10 जणन के गिरफ्तार करे वरतो।

नैब तालीम खाते के 1979 का जून 2020 तक भर्ती थियल मुलाजमन जो रिकॉर्ड तलब करे वरतो। नैब पारा भर्ती थियल समूरन तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमन जो तालीमी काबिलियतन जो रिकॉर्ड तलब कयो वियो। तालीम खाते समूरन लागापियल इदारन और जिले तालीमी ऑफिसरन के खत लिखी छो। खत में हिदायत कई वही हफ्ते अंदर रिकॉर्ड उमाड़ो वे रिटायर्ड मुलाजमन जो भी समूरो रिकॉर्ड तलब कयो वियो है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0303-85-569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दी में उभर वारो पाड़ेसरी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दी में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल थी रही आहे। सभई गॾिजी फितने खे ख़तम कंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।